शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकती एन सही फिल्म का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर दर्द से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, तो आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा। तवारिक गवाह है, यानी खस्की ने इतिहास गवाह है। अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। आओ, ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेकदिन ससन सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाएं। चलिए, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य। और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा, पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाएं, निखती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओपी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकालकर ये गीत हम आपको सुनाएं ओवर फोन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55fm.internet पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार डुएट हमने पेश की हो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।

एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं। फिल्म में है राही बदल गई है, इसी फिल्म से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश की और आप उम्मीद है सुने होंगे और अवश्य अच्छा लगा होगा। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और मैथिली मुकेश, मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, और देखते हैं किशोर कुमार जी साथ हैं।

देश के सच्चे दुश्मन हैं ये जो मिलावट करते हैं। इनकी बदौलत कितने लोग मौत से पहले मरते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ाना सबसे बड़ा सवाब है। कौन है सच्चा

दो जासूस करें महसूस, रफ़ी साहब और माइती मुकेश मिल के ये गीत गाए हैं। आपको पता है रफ़ी साहब मुकेश जी बहुत गाने नहीं गाए हैं, कुल मिलाकर जहाँ तक जोड़ा गया है, मिले हैं लोग को, मुझे भी मिला है, तो द्रियंत तक गाने हैं, उसमें से ये एक था। टोटल मिलकर यानी कुल मिलाकर द्रियंत तक गाने रफ़ी साहब और मुकेश जी साथ मिलकर गाए हैं, और उन द्रियंत तक में से यानी 23 में से ये एक था। दो जासूस करे महसूस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है देखते हैं, हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, ये गीत लेकर है।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों के दिल पर राज करने वाला मुकेश जी आपको सुनाइए मेरे प्यार में क्या वफा न थी। यहाँ क्या बात है, ये गीत सुनकर रफ़ी साहब ने कहा अगर प्यार की बात है, वफा की बात है और बेवफा की बात है तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं कि जवानी और दीवानी की बात कर रहा है। लीजिए रफ़ी साहब की आवाज़ में ये जवानी दीवानी की बात। जवान तुम हो जवान हम हैं।

शंकर जय किशन के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ जवान तुम हो जवान हम हैं, फिल्म दुनिया में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करते हैं, ये है इसे चून अभी नहीं किए थे क्योंकि भी मुझे भी नहीं पता गीत कौन सा है। चलो मिलकर सुनते हैं, आप भी सुनिए और मैं भी सुनता हूँ।

ये कश्मीर है, ये कश्मीर है गीत के शब्दों से यही पता चलता है कि इसकी शूटिंग अवश्य हुई होगी कश्मीर में। बर्फीली यादों, बर्फीली पहाड़ों, गर्मी भी हो सकता है, पता नहीं। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाएं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे मैंने कहा, बर्फीली पहाड़ों में कश्मीर के ये शूट किया हुआ होगा। बहरहाल चलो कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और पेश करते हैं ये गीत, क्या ख्याल है।

कि हम आधा आधा लता जी और अपन की किशोर कुमार फिल्म आज़ाद में से निकाले हैं और हमने पेश की बस सिर्फ आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है ये रफ़ी साहब की, ये रफ़ी साहब का ये गीत है जिसमें लता जी भी साथ दी है और फिल्म है हंसते जख्म। इस तरह से

फिर हम हंस दिल जख्म में से निकाले हैं लता जी और रफी साहब की आवाज में ये पेश किया गया, बस आप ही के लिए शुभकामना के साथ। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं और वो ये है इस तरह से, ये दुएत है उन्हीं कौमी के साँच पर।

0: रफ़ी साहब आशा जी, ये हाँ दिल ने फिर याद का किया निकतिन सहन सस्तखा, ये फिल्म सोनी कोमी के साज पर हमने पेश किए ओवर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। क्या ख्याल है कर जमाया आपको ये सुनाऊं, वाह क्या बात है।
1: सुनी

सुंदर भी लगती हूँ, अच्छी भी लगती हूँ, आजा रे आजा शर्म। आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, बहुत दिनों बाद शायद आप ये गीत सुनोगे, इस तरह से आ रहा है।

किसका रास्ता देखे, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत हमने पेश की हो फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए आपका स्वागत करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग। इस

0: आ जाऊंगा दो अश्क बहा लूं। तो चलो रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, धमाकेदार गीत है। जी हाँ, चलो सुनते हैं क्या इसका नाम है, क्योंकि नाम बताने में झिझकता है।
1: सुनो, तुम्हारा असली नाम क्या है?
2: जी मेरा असली नाम जॉनी।
1: और नकली?
2: नकली भी जॉनी।
1: इसके अलावा भी कोई नाम है?
2: जी हाँ, जानी आपको ज्यादा पसंद है।

मेरा सनम सबसे प्यारा है, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। और ये था आशा जी और कुमार सानू, फिल्म है दिल का क्या कसूर, दिल का क्या कसूर में से निकाले हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये आपको सुना दूँ।

जाने कैसा है मेरा दीवाना, या क्या बात है। आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म है आंसू बन गए फूल, उसी में से निकाल कर हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो www.faunfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुनते हैं मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। आप चाहे जहां भी होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चून हैं। सुबह हो या शाम होगा, रात्रि होगी, पता नहीं कौन सा मौसम है, कौन सा दिन है, आपके जगह आपके जहाँ पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए शुभकामना के साथ हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

शम्मा बुझने को चली, ये गीत हम निकाले हैं, देखते हैं। फिल्म मेरे ध्यान से निकल गया, शम्मा बुझने को चला, फिल्म गंगा की लहरें। हाँ, गंगा की लहरें में से निकाले हैं रफ़ी साहब का ये गीत, हम आपको सुनाए हैं फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

संग मरमर से तराशा हुआ ये शोक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होंठों में थिरकती है वो रंगीन शराब जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है, लेकिन इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है। हमसे बेहतर है ये पाजेब जो इस पांव में है, रख ले कल के लिए ये दूसरी पाजेब दिल, कल इसी बज्म में फिर आने को जी चाहता है।

इस रेशमी पाजेब की झनकार की सदके लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश किया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या ख्याल है, शाम के वक्त है और आप भी हैं और मैं भी हूँ।

0: लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म छाया में से निकाले हैं निगेटिव एन एस एस तक का ये फिल्म है और सलील चौधरी के साथ पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, इस तरह से आ रहा है।
1: आई है रे, हमने

खाई रे हमने कसम हंस परदेसी। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो एक गीत और हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन समय नहीं मिला कि ये गीत कौन सा है। हाँ ये तो पता है कि फिल्म बाबू का है, निकिता फैफन तख्त का है और आशा जी और किशोर कुमार जी ने गाए हैं और देखते हैं राजेश रोशन के साथ, ये सब पता है लेकिन गाना चलो मैं भी सुनता हूँ, उम्मीद है आप भी सुनोगे।

स्थानीय रेडियो का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हिंदुस्तानी रेडियो स्टिफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनातिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंते सुसुलोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें इश्तिहारे, तो या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यार, तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। डाउन सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो ना, अपमान पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी की फाइट सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी पहले Van maandag tot vrijdag van 9 uur is morgens tot 5 uur middags op de volgende telefoonnummers kantoor 073562247 of Studio Katarka nummer 073262077. De job hier radio kan kam hona, denk aan Fahon Hindustani Radio. Je bent van harte welkom. राम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप है तो हम लोग है ना। Bent u nog geen lid van Fahon Hindustani Radio, तो गुजार इस बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द Fahon Hindustani Radio का मेंबर बने और ओ को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। Recent hebben we ook nog onze eigen karaoke team, dus blijf ons volgen via social media en ook via onze programma's. तो आप भी आकर इस छोटा और मोटा सा जो फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार है ना, उसमें आप भी आकर शामिल हो जाए। सभी जानकारी न्यूज़ 7 तक पर आप तार करें एंड फ्रांक द मेस्ट्रो जॉनी नंबर वन। एक दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे टॉट फिल्म मैं तेरे लिए, जो रिलीज किया गया था 1988, और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मीनाक्षी शेषरारा जी के साथ, और नूतन जी भी इसका फिल्म में काम किए हैं। संगीतकार बप्पी लहरी के साथ है और सभी गाने लिखा है देवानंद का छोटा भाई श्री विजय आनंद जी ने। तो कुछ नगमे रह गया था सुनाने के उस फिल्म में से, तो हम एक अति सुंदर बयान मैं रख चुका हूँ प्लेयर में आप श्रोताओं के नाम पे। जाने से लगते हो मैं तेरे लिए, बप्पी लहरी के साज पर और उन्हीं के मधुर आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल।

ब्यूटीफुल सॉन्ग देखा जाए तो बप्पी लहरी के सांच पर उन्हीं के आवाज में साथियों के साथ इंटरव्यू फिल्म मैंने तेरे लिए 1988 वादा निभा दो मैं तेरे लिए। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को फ्रॉम द मूवी मैं तेरे लिए, अमित कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में और साज है बप्पी लहरी जी का।

दिलों को मिला रो और वादा भी निभा रो। फिल्म मैंने तेरे लिए अति सुंदर बयान अमित कुमार और साथियों के आवाज में। अगला बयान आवाज दे तू कहाँ है मैं तो तेरे लिए, टाइटल सॉन्ग और एक बार फिर किशोर दा का सुपुत्र अमित कुमार जी के ब्यूटीफुल आवाज में, बप्पी लहरी के साज और विजय आनंद जी के अल्फाज़।

Ja, maar het heet Beautiful Song uit de film Meterilie 1988. Amit Kumar, Satyo Kea, Wanzometi, Sundarbiana, Amsterdam in Suna. Composed by Bappi Lahiri over Alvazita. Devanandji ka chota bhai Vijayanandji ka. अगला बयान मन के मंदिर में जलती रहे एक दिल को छू लेने वाला नगमा है एड फिल्म में तेरे लिए गजल स्टाइल है कंपोज एंड अरेंज बाय महान संगीतकार द ग्रेट बप्पी लहरी और अल्फाजे क्या अल्फाजे है

क्या बात है, रोटे खड़ा हो जाते हैं ऐसे ऐसे नगमे सुन सुनकर। ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज एंड अरेंज बाय महान संगीतकार गायक प्रोड्यूसर द ग्रेट बप्पी लहरी जी, और गाने वाला था महान गायक एक यार 80-90 श्री अनूप घोषाल जी। तो साथियों, सभी नगमे फिल्म मैंने तेरे लिए का 80-90 मैंने आप सभी को सुना चुका। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो रिलीज किया गया था 80-90 में, और इस

फिल्म में देवानंद साहब जी ने काम किया था महान अभिनेता भैया भरत द ग्रेट मनोज कुमार जी के साथ, मलकाए हुस्न श्री रेखा जी के साथ और महान अभिनेता शशि कपूर जी भी इस फिल्म में काम किए हैं। संगीतकार है उत्तम जगदीश जी और गाने वाले तो एक से एक आप सुनते रहेंगे। और पहला नगमा उस फिल्म में से लेकर आ रहे हैं आप सभी के सेवा में पद्मश्री महेंद्र कपूर जी और उत्तम जगदीश जी, क्या संगीत दिया है इस फिल्म में। मिलकर सुनते हैं ये अति सुंदर टाइटल सॉन्ग मैं एक क्लर्क हूँ।

कुछ छू लेने वाला नगमा, कुछ आंसू भी निकल आते हैं इसी से नगमे सुन सुन के ना। फ्रॉम द मूवी मैं एक क्लर्क हूँ, मनोज कुमार पे फिल्माया गया है अति सुंदर बयान, महेंद्र कपूर जी के ब्यूटीफुल आवाज में, संगीतकार उत्तम जगदीश के साथ, फिल्म क्लर्क टाइटल सॉन्ग।

आपके साथ ही हो, कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। किसी को चाहो तो इतना चाहो कि वो किसको और चाहने की सोच भी ना सके।

0: वो किसी और को चाहने की सोच भी ना सके। हम भूल जाते हैं उसके सारे सितम, हम भूल जाते हैं उसके सारे सितम जब उसकी थोड़ी सी मोहब्बत याद आती है। और सितम का मतलब है अंडरड्रकिंग, दिस सताना। अगला शेर जो लिखा है यारो, चलेंगे तेरे साथ तेरा साया बनकर, छोड़ ना देना बीच राह पराया समझकर। ये सब दो लाइन शेर शायरी है, यही तो खूबी है ना, इतनी कम शब्दों में लोग कुछ ना कुछ बता देते हैं, पूरी कहानी बता देते हैं। सोचती हूं कि मैं कुछ और भी सोचो, सोचती हूं कि मैं कुछ और भी सोचूं, मगर टूट जाते हैं ख्यालात तेरी याद के बाद। किसी और तरीके से भी मिल जाती है क्या मोहब्बत, किसी और तरीके से भी मिल जाती है क्या मोहब्बत, हमें तो दुआओं के सिवा कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा तू मेरी सांसों में, दिल में, ख्यालों में, धड़कन में, रूह में, नस नस में, ये मैंने कहा, इसी को तो मोहब्बत कहते हैं यारो। शिकायतें वहां होती है जहां एतबार ना हो, शिकायतें वहां होती है जहां एतबार ना हो, मेरा तो यकीन ही तुम हो तो शिकायत कैसी। तो ये था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स की चाहने वालों के लिए। आगे के प्रोग्राम में कुछ और कोशिश करूंगा सुनाने के लिए। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों, एक और ही सुंदर बयान, और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, और साथ दे रहा है मुकेश जी का सुपुत्र नितेन मुकेश जी। रख गीता पे हाथ क्या बात है, महान म्यूजिक डायरेक्टर उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना ने मिलके इस सुंदर बयान को सजाया है।
1: और बेल आइकन को प्रेस करें

रखा गीता पे हाथ, क्या बात है, अति सुंदर बयान। एड फिल्म क्लर्क 1989, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी और नितिन मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। कंपोज एंड अरेंज बाय उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना। हमारे साथियों, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आज श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, एक बार फिर से स्वागतम। वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नाटिलक बदंत सो सो लोबी लोबी अंत ब्लेसिंग्स। तो जो भी रेडियो का काम हो, देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, सभी जानकारी 9 7 3 5 6 2 2 7 4 दफ्तर का तार का नंबर, स्टूडियो का तार का नंबर 9 7 3 2 6 20 77 पर आप तार करके सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इश्तिहारे खास फरमाइशें या जरूरी खबरें के बारे में, तो जो भी रेडियो का काम हो, देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यार, चर्चा करते रहना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में। इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाएं। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 7 तक 3 5 6 2 2 7 4 तक पर। एकदम प्रोग्राम की तरफ लेकर चलते हैं आप श्रोताओं को। हम पहुंच चुके थे फिल्म संगम तक और उसी फिल्म में से नगमे चल रहे हैं। अगला बयान बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को जा रहे हैं आप सभी को। लाखों करोड़ों का दिल चुराने वाला द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी साथ दे रही है। कुछ आवाजें सुनेंगे विजयंती माला जी के, मिलकर सुनते हैं।

बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।

ब्यूटीफुल सॉन्ग बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं फ्रॉम द मूवी संगम टाइटल सॉन्ग uit 1964 लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला रमाई थी मुकेश जी के ब्यूटीफुल आवाज में कंपोज बाय शंकर जय किशन और अल्फाज थे हजरत जयपुरी जी का. अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग फ्रॉम द मूवी संगम. सभी गाने इस फिल्म का सुपरहिट साबित हुए. ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर एक बार फिर सुर का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी साथ दे रही है लता मंगेशकर जी.

प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना। ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को, सुर का बादशाह द क्वीन द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी, और थोड़ा बहुत साथ दे रही थी लता मंगेशकर जी। शंकर जय किशन के सांच पर अगला बयान सुनाने से पहले कुछ आखिरी शेर्स हो जाए यारो आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में। फॉर द शेर्स लॉफर्स, अर्ज क्या है यारो की ये तो ये जो जनाब है ये तो खुदा से भी लड़ना चाहता है यारो। अर्ज किया है कि कभी फुर्सत से हिसाब करेंगे तुझसे ऐ खुदा, कभी फुर्सत से हिसाब करेंगे तुझसे ऐ खुदा, कि मैंने गुनाह ज्यादा किया या तूने जख्म ज्यादा दिए। नींद तो क्या आएगी यारो, नींद तो क्या आएगी यारो, मौत आई तो सो लेंगे, कुछ ना किसी से बोलेंगे क्यों भाई। होश हालात पर काबू तो कर लिया मैंने, होश हालात पे काबू तो कर लिया मैंने, उन्हें देखे फिर होश खो गए तो क्या होगा यारो। दिल करता है कि लिपट जाऊं रूह बन कर तेरे जिस्म से, दिल करता है कि लिपट जाऊं रूह बन कर तेरे जिस्म से, कि जब तुमसे जुदा हो, कि जब तुमसे जुदा हो तो तेरी जान ही निकल जाए। आखिरी शेर, जो लोग आपस में हम हम करके बात करते हैं ना, जो लोग आपस में हम हम करके बात करते हैं, वो एक दूसरे से वो एक दूसरे के हम दर्द होते हैं यारो। ये था कुछ आखिरी शेर्स। अगला बयान ओ महबूबा, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी संगम निगरी फिल्म से। एक बार फिर लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला The heartthrob of millions, the mighty Mukesh, O Mehbooba, Shankar Jai Kishan ke master piece of composing, Mukesh ji ke beautiful awaaz mein, I love this song.

Churani wala, the heartthrob of millions, the mighty Mukesh, you can beautiful avans me. Het is een Rabiana Amsterdam in Shuna, de film Sangam 1964. अब जरा दिल थाम के बैठिए हमारे प्रिय श्रोताओं, एक बार फिर वही महान गायक द हार्ट थ्रब ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश, जो लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला था और जिसे हम लोग रोजाना भी याद करते हैं और करते रहेंगे, ऐसा गायक वो था जो अभी कितने लोगों के दिलों में बसा है, वही महान गायक माइटी मुकेश का ये जबरदस्त सॉन्ग जरा दिल थाम के बैठिए कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिशन बाय महान संगीतकार जोड़ी शंकर जय किशन, मिलके सुनते हैं। रोने को दिल चाहता है, बार बार जब ये नगमा मैं सुनता हूं तो दिल फट जाता है।

अति सुंदर बयान श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया ऐड फिल्म संगम 1964 लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना और साथ ही साथ आज का इस हसीन प्रोग्राम का ये आख

यही आशोमीद लेकर घर को जा रहा हूं कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम कार्यक्रम आप श्रोताओं को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूं आवाज के जरिए, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना जहां पर भी हो, जिस हाल में हो। फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। तो हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन हो मैट हेलफील्ड लाइस्टर प्लेजीर के साथ। तो मुझे आपसे भी इजाजत दे और जाते जाते हमेशा की तरह तो आदत से जो मजबूर हूं ना कुछ सुना देता हूं, तो मैं कोशिश करता हूं आज आप सभी को कुछ संगीत के साथ सुनाने को।

जय श्री राम। राम के अनन्य भक्तों, प्रभु प्रेमियों, प्यारे प्यारे भाई बहनों एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके गोपाल परदेसी बाबा की तरफ से राम राम। नाना प्रकार के राम अवतारा रामायण सबको किए अपारा। भक्तों, जिस प्रकार समय समय से राम के अवतार होते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न कल्पों में और अलग अलग लोकों में दुनिया में भी विभिन्न प्रकार से रामचरित का वर्णन किया गया है। इसी कारण तुलसीदास ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। रामायण के करोड़ों भक्तों में से राम कथा के प्रसिद्ध रचयिता कौन है? तो भक्तों, भगवान शिव ने इसे रचकर माता पार्वती को सुनाया, फिर भगवान से सुनकर ये प्रसिद्ध कथा काकभुशुंडी जी ने अपने पक्षियों के समूह में बैठकर गरुड़ जी को सुनाया। इसी कथा को महर्षि याज्ञवल्क ने गंगा के तीर पर बैठकर भरद्वाज मुनि और दूसरे ऋषियों को सुनाया। सर्वप्रथम इस कथा की रचना आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने की, तत्पश्चात समय समय पर अलग अलग भाषाओं के महान कवियों ने इस कल्याणकारी गाथा को अपने अपने समय की सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए अपने अपने ढंग से गाया। रामायण में सबसे अधिक मूल्यवान यानी विशेष बात यह है कि इस कथा में श्री राम का चरित्र एक आदर्श मानव के रूप में दर्शाया गया है। इसी कारण ये कथा मानव को सच्ची राह दिखाती है। भक्तों, इस राम कथा के द्वारा किस प्रकार समस्त प्राणियों ने अपने अपने धर्म अर्थात अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते जा रहे हैं। प्रिय प्रभु प्रेमियों, ये महान गाथा संप्रदाय और जात पात को ना देखते हुए हर प्राणी की आत्मा को छूती है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से धरती के प्राणों में शक्ति प्रदान करती है, हर युग में बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव मनाया जाता है। और ये उत्सव तभी मनाया जा सकता है जब हमारे मन में प्रेम, सच्चाई और विश्वास हो। ये राम कथा रस गंगा जहां भी बही, सबने उसका स्वागत किया, फिर चाहे वो धरती का कोई भी कोना क्यों ना हो। सज्जनों, ये राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। तो आइए श्री राम के प्यारे भक्तों, शुभारंभ करते हैं रामायण का प्रथम कांड।

वंदनीय है। प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्तगणों, कवियों के समाज में चंद्रमा के समान सुशोभित श्री तुलसीदास जी के अनुसार राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी अर्थात प्रभु श्री राम जी के लीलाओं की गाथा अत्यंत सुंदर है एवं प्राणी मात्र की प्रत्येक शंका का समाधान करती है। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड में श्री राम से बड़ा और कोई नाम नहीं है और श्री राम के कथा से बढ़कर पुण्यदायिनी अन्य कथा नहीं है। आज आप और हम श्री रामायण के बाल कांड का रस आस्वादन करेंगे।

शैलसुता पार्वती को जब तप करते हुए हजारों वर्ष बीत गए, तब आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब शिव जी पति रूप में अवश्य मिलेंगे। और भक्तों, उधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने भगवान शिव भोलेनाथ को पार्वती के साथ विवाह के लिए तैयार किया। इस प्रकार शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। एक बार भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। अचानक पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे आदिदेव, हे प्राणनाथ, हे कृपा निधान, मुझे उस नाम का रहस्य बताइए जिसका आप सुमिरन आप

शिव जी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी वो कथा विस्तार से सुनाता हूँ जिसे काक बुसुंडी जी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाई थी। जगत प्रसिद्ध के कई देश में धर्म और नीति का पालन करने वाले प्रताप भानु नाम के राजा राज्य करते थे। उनके भाई का नाम अरिमर्दन था एवं धर्मरुचि नाम का बुद्धिमान मंत्री भी था, परंतु विप्र समुदाय के श्रापवश उनको कुल समेत राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। ये तीनों ही क्रम से रावण, कुंभकरण एवं विभीषण के नाम से पुलत्स्य कुल में उत्पन्न हुए।

भगवान अग्नि देव ने यज्ञ से प्रसन्न होकर जो हविष्यान राजा को दिया था उसे खाकर तीनों रानियां कौशल्या, केकई एवं सुमित्रा गर्भवती हो गई। तीनों रानियां मन में बड़ी हर्षित हुई। भगवान जिस दिन से गर्भ में आए चहुं ओर हर्षोल्लास छा गया। इस प्रकार 9 माह बीत गए जब और वो समय आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। नक्षत्र योग लगन एवं वार सभी अनुकूल हो गए। पावन चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का अत्यंत प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना सर्दी थी ना

प्रभु श्री रामचंद्र जी के अतिशय प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम भरत लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न के चूड़ाकरण नामकरण उपनयन आदि संस्कार विधिवत किए गए। भगवान श्री राम जी ने अनेक प्रकार की मनमोहक बाल लीलाओं से सभी का मन मोह लिया। एक बार माता कौशल्या ने बाल रूप श्री राम को पलने में सुलाकर पूजा घर में ठाकुर जी को भोग लगाया तो उन्होंने बालक श्री राम को वहां भोजन करते देखा। माता पलने के पास गए तो शिशु को पलने में सोता देखकर विस्मित रह गए। भक्तों, इस प्रकार अनेक लीलाएं करते हुए श्री राम जी सबको विस्मित

महाराज दशरथ ने मुनिवर विश्वामित्र के सन्मुख हाथ जोड़कर जैसे ही कहा कि मुनिवर, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, ये चार पुत्र मैंने वृद्धावस्था में बहुत प्रयत्न से पाए हैं, आप इन्हें छोड़कर चाहे जो मांग लीजिए, चाहे मेरे प्राण मांगो, मैं सहर्ष देने को तैयार हूं। तो तुरंत ही विश्वामित्र जी क्रोधित हो उठे और राजसभा से उठकर चल दिए। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शांत किया और राजा को समझाया कि राजन, राम लखन को आप मुनिवर के साथ भेज दीजिए। राम लखन कोई साधारण बालक नहीं है।

प्रभु श्री राम तो पृथ्वी पर नर लीला रचाने और राक्षसों के विनाश हेतु अवतरित हुए थे। अतः उन्होंने मारीच की मायावी शक्तियों को देखकर उसे बिना फर का बाण मारकर लंका भेज दिया, ताकि सीता हरण के समय वहां स्वर्ण मृग बनकर काम आ सके। इसके पश्चात महामुनि विश्वामित्र के पास मिथिला के महाराज राजा जनक के यहां से सीता स्वयंवर का समाचार आया। मुनि विश्वामित्र ने श्री राम और लखन को साथ लेकर मिथिला के लिए चल दिए। मार्ग में अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, जो श्रापवश पत्थर बनी थी, भगवान की चरण कमल पड़ते ही नारी रूप होकर अपने पति गौतम ऋषि के लोक में

श्री गंगा जी की पूजा अर्चना एवं स्नान करके मुनि विश्वामित्र आनंद कंठ भगवान श्री राम एवं लक्ष्मण जी को साथ लिए जनकपुरी में पहुंचते हैं तथा वाटिका में ठहर जाते हैं। राजा जनक वाटिका में ही उनसे भेंट करने पहुंचते हैं। मंगलमूल श्री राम को देखकर जनक जी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं तो मुनिवर श्री राम और लक्ष्मण का परिचय कराते हैं। लक्ष्मण के मन की बात जानकर प्रभु श्री राम गुरु जी से नगर भ्रमण की आज्ञा लेकर नगर के बाजारों में घूमकर आते हैं।

प्रभु राम के अनन्य भक्तों, राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी राजकुमार महादेव के धनुष पर प्रत्यांजल यानी धनुष की डोरी चढ़ा देगा उसी के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। और आज धनुष यज्ञ का वो पावन दिन आ गया है जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश देश से राजकुमार पधारे हैं। रावण और बानासुर जैसे योद्धा भी धनुष यज्ञ में आए। रंगभूमि की शोभा अवर्णनीय है। महाराजा जनक का मंत्री स्वयंवर में आए हुए राजाओं को राजा जनक की प्रतिज्ञा सुनाई।

राजा जनक की शोक एवं व्यंग भारी वाणी सुनकर शेष अवतार लक्ष्मण जी क्रोधित होकर बोले, हे महाराज, सूर्यवंशी वीरों के होते हुए धरती को वीरों से खाली कहना अनुचित है। यदि भैया श्री राम जी आज्ञा दे तो मैं विध्यांचल पर्वत को फूंक मारकर मच्छर के समान उड़ा सकता हूं। इस धनुष की तो बात ही क्या। तो भक्तों, तब मुनि विश्वामित्र ने लक्ष्मण को शांत करके श्री राम जी को कहा कि हे पुत्र, तुम उठो और धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाकर जनक के शोक दूर करो और उनकी प्रतिज्ञा पूरी करो।

बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की जय जयकार से संपूर्ण ब्रह्मांड डोल उठा। नगर में बाजे बजने लगे। सज्जन लोग प्रसन्न एवं दुष्ट उदास हो गए। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट कुल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। तभी शिव धनुष का टूटना सुनकर भगवान परशुराम जी रंग भूमि में आ पहुंचे। तन पर विभूति, विशाल ललाट पर त्रिपुंड, सिर पर जटा शोभायमान हो रही है। कांधे पर तरकस एवं एक हाथ में सुंदर फरसा धारण किए हुए हैं। सबने मुनिवर को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया एवं मुनि विश्वामित्र गले मिले। तब

होने का नाम नहीं देता। जब श्री राम जी ने शीश झुकाकर हाथ जोड़कर परशुराम जी से कहा कि हे देव, हमारा सिर तो सदैव आप ही के चरणों में रहा है, आपके चरण हमने छाती पर लिए हैं, ये कहकर श्री राम जी ने परशुराम जी को उनके पूर्वज भृंग ऋषि जी का पद चिन्ह अपने हृदय पर दिखाया। तब परशुराम जी समझ गए कि ये तो स्वयं श्री नारायण है। तब उन्होंने बारंबार श्री रामचंद्र जी की वंदना की और तप करने के लिए वन की ओर चले गए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की।

प्रभु श्री राम जी के भक्त जनों, इस प्रकार श्री राम जी और जनक दुलारी सीता जी का विवाह संपन्न हुआ। बारात जिस समय अयोध्या वापस आई तो पूरी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया गया। माताओं ने सीता सहित चारों बहुओं की आरती उतारी, मंगल गान हुए। राजा ने बहुमूल्य हीरे मोती स्वर्ण गौ आदि दान किए। प्रभु प्रेमियों और श्री राम जी के भक्त जनों, जो भक्त प्रभु श्री राम जी के बाल चरित्र एवं विवाह गाएंगे अथवा सुनेंगे, उनके जीवन में सदैव आनंद ही आनंद होगा। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बाल रूप श्री राम जी के।

प्रेमी भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बाल लीलाओं का प्रथम कांड जो बाल कांड के नाम से प्रसिद्ध है यहां समाप्त हुआ और अब आप दूसरा यानी अयोध्या कांड सुनिए। राम कथा हमें प्रेम, त्याग और कर्तव्य का बोध कराती है। तो आइए शुभारंभ करते हैं रामायण का तीसरा कांड, अरण्य कांड।

अयोध्यापति दशरथ नंदन करुणायतन प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्तों, देवराज इंद्र के मूर्ख पुत्र ने प्रभु का बल देखने के लिए आपको पहले से बताए हुए तुच्छ कर्म किए, परंतु जब संपूर्ण ब्रह्मांड में उसे कहीं शरण न मिली तो देव ऋषि नारद जी ने उसे बताया कि हे जयन, श्री राम के विरोधी को भला कौन शरण दे सकता है, अतः अब तुम प्रभु श्री राम की ही शरण में जाओ। वो प्रभु श्री राम दया के सागर हैं, वे शरणागत को नहीं ठुकराते, यह उन्हीं की बान है भक्तों। तब वो दुष्ट कौवा प्रभु श्री राम की शरण में जाकर त्राही माम करने लगा, तो श्री रामनाथ जी उसकी आंख से वो तिनका निकाल कर उसे एक

जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के बल से ब्रह्मा विष्णु और शिव जी को नवजात शिशु बनाकर पालने में झुलाया था, उन्हीं माता अनसुईया ने वैदेही सीता जी को नारी धर्म की शिक्षा प्रदान की। माता अनसुईया बोली, पुत्र सीता, धीरज, धर्म, मित्र और नारी के आपत्ति काल में ही परीक्षा होती है। पति चाहे वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी अथवा दीन ही हो, परंतु नारी को उसका अपमान नहीं करना चाहिए। मन, कर्म, वचन से पति चरणों की सेवा ही नारी का एकमात्र धर्म है। पुत्री सीता, संसार में चार प्रकार की पतिव्रता नारियां हैं। प्रथम, जो नारी पति के सिवा अन्य पुरुष को सपने में भी नहीं देखती। दूसरी, जो पर पुरुष को पिता, भाई एवं पुत्र के समान देखती है। तीसरी, जो धर्म एवं कुल की मर्यादा के कारण पतिव्रत धर्म का पालन करती है। तथा चौथी वे हैं जो अवसर न मिलने के कारण व्यभिचारिणी यानी उल्टा नहीं हो पाती।

जब सीतापति श्री रघुनंदन जी वन में आगे चले तो एक स्थान पर हड्डियों का एक ढेर देखकर प्रभु ने मुनियों से उस ढेर के विषय में पूछा तो मुनियों ने हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कहा कि हे स्वामी, आप सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं, फिर भी अनजान की भांति हमसे पूछते हैं तो हम बतलाते हैं। प्रभु, राक्षसों के दलों ने ऋषि मुनियों को खा डाला है। यह उन्हीं ऋषियों के अस्थि समूह है। आह, करुणा निधान दयालु श्री राम जी के नेत्रों में जल भर आया। कंठ अवरुद्ध हो गया, यानी आवाज नहीं निकल पा रही थी। फिर महाबाहु श्री रामचंद्र जी ने दोनों भुजा उठाकर संकल्प किया, यानी प्रतिज्ञा की कि मैं रघुवंश क्षत्रिय दशरथ पुत्र राम आज प्रण करता हूं, यानी शपथ लेता हूं कि जब तक पृथ्वी को राक्षसों से हीन न कर दूं, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा।

जानकी वल्लभ करुणा के अथाह सागर श्री रामचंद्र जी मुनि अगस्त्य जी के चरणों में शीश झुकाकर सीता जी एवं अनुज लक्ष्मण जी के साथ आगे चले और पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। यह स्थान अत्यंत सुंदर सबके मन को हरने वाला था। प्रभु श्री राम जी ने एक सुंदर परन कुटीर बनाकर सीता जी एवं लक्ष्मण के साथ वहीं निवास किया। जब प्रभु श्री राम जी ने पंचवटी पर निवास किया, हर ओर आनंद ही आनंद छा गया। पर्वत नदी और तालाब अत्यंत शोभायमान हो गए। एक दिवस सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से अत्यंत विनम्र भाव से हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु,

हे सौमित्र, भक्ति सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही प्राप्त कर लेता है, परंतु भक्ति भी उसी को मिलती है जिसकी पृथ्वी के देवता सिद्ध प्राणी के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद के अनुसार जीते हैं और कर्म में रत। हे लक्ष्मण, भक्ति का फल वैराग्य, वैराग्य का धर्म में दृढ़ता और धर्म में प्रेम का फल मेरी प्राप्ति है। भक्ति नौ प्रकार कही गई है। इस प्रकार धर्म रक्षक मर्यादा का निर्वाह करने वाले रघुकुल दीपक श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को ज्ञान, वैराग्य, माया, जीव, ईश्वर एवं भक्ति का उपदेश दिया, जिसे श्रवण करके सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी

प्रभु श्री रामचंद्र जी के संकेत पर सुमित्र लक्ष्मण जी ने उस दुष्टा राक्षसी सूर्पनखा के नाक और कान काट लिए। रघुकुल भूषण श्री रामचंद्र जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मानो उन्होंने लक्ष्मण के हाथों सूर्पनखा के नाक कान कटवा कर राक्षस राज रावण को चुनौती दी हो। उधर सूर्पनखा रोती बिलकती हुई खरदूषण नाम के राक्षसों के पास गई। नाक कान से रक्त इस प्रकार बह रहा है मानो विशाल काले पर्वत से गिरू का झरना फूट रहा। सूर्पनखा ने रोते बिलकते हुए खरदूषण को संपूर्ण आप बीती सुनाई तो खरदूषण क्रोध में आकर अपनी सेना लेकर श्री राम लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए चल दिए।

कुलस्त्यवंश में उत्पन्न हुआ विशर्वा ऋषि का पुत्र राक्षस राज महाबली रावण को जब सुरपनखा ने खरदूषण वध का समाचार सुनाया तो रावण ने सुरपनखा को समझाकर अपने बल का बखान करके महल में भेज दिया। परंतु रावण स्वयं चिंता मग्न हो गया। रावण विचार करने लगा कि खरदूषण तो मेरे समान बलशाली थे, उनको भगवान के सिवा अन्य कोई नहीं मार सकता। इसका अर्थ है श्री भगवान ने धरती का भार हरने के लिए अवतार धारण कर लिया है, अतः अब मैं उनकी स्त्री का हरण करके उनसे वैर करूं, क्योंकि इस तामस शरीर से भजन तो होता नहीं। यदि वे कोई साधारण मानव हैं तो उन्हें युद्ध में मारकर यश पाऊं, और यदि वो स्वयं श्री हरि हैं तो उनके कर कमलों से मृत्यु पाकर उनके धाम जाऊंगा।

बेचारा मारी थी, इधर कुआं उधर खाई। यदि रावण के कहे अनुसार नहीं किया तो रावण मार डालेगा, और यदि इसका कहा मानकर सोने का हिरण बना तो प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु। तब हमारी ने निश्चय किया कि इस पापी के हाथों मरने से अच्छा यही होगा कि मैं श्री हरि के हाथों मरकर उनके धाम जाऊं। तब हमारी सोने का सुंदर हिरण बन गया और पंचवटी आश्रम के निकट जाकर उछल कूद करने लगा। जब जनक नंदनी श्री राम वल्लमा सीता जी ने उस अदित्य मृग को देखा तो सीता जी ने विनय पूर्वक श्री राम जी से कहा, हे नाथ, देखिए कितना सुंदर हिरण विचर रहा है।

ग्यारहवीं मृग पर जब प्रभु श्री रघुनाथ जी ने बाण चलाया तो उसने श्री राम जी की आवाज में हाय लक्ष्मण पुकारा। उधर आश्रम में जब सीता जी ने ये दुख भरी वाणी सुनी तो उन्होंने सोचा कि स्वामी किसी संकट में है। तब उन्होंने लक्ष्मण जी को श्री भगवान के रक्षा हेतु जाने का आदेश दिया। सुमित्रा नंदन ने आश्रम से जाते हुए मंत्रपुरित एक रेखा आश्रम के चारों ओर खींचकर कहा कि हे माता, आप इस रेखा से बाहर मत जाना, ये रेखा आपकी रक्षा करेगी। इस रेखा के अंदर जो भी जीव प्रवेश करेगा वो वहीं भस्म हो जाएगा। उधर लंकापति रावण आश्रम को सुना देख याचक के वेश में आश्रम पर जा पहुंचा और भिक्षाम देही कहकर अलख जलाई।

जिस प्रकार बधिक के मजबूत जाल में कोई नन्ही सी चिड़िया फंसकर केवल पंख फड़फड़ाती है, उसी प्रकार जनक नंदनी श्री सीता जी दुष्ट और महाबली रावण के कब्जे में केवल हे राम रक्षा कीजिए की दर्द भरी पुकारे कर रही है। जब आकाश में विचरण करते हुए गिद्धराज जटायु ने श्री राम नाम एक नारी स्वर में सुना तो उसने सीता जी को पहचान लिया कि ये तो मेरे सखा महाराज दशरथ की पुत्र वधु सीता है। अतः जटायु ने सीता को रावण के बंधन से छुड़ाने हेतु राक्षस राज रावण से युद्ध किया, परंतु रावण ने तलवार से जटायु के पंख काटकर उसे भूमि पर गिरा दिया एवं सीता को लेकर उड़ चला।

अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी, आनंद के राशि, अजन्मा एवं अविनाशी श्री रामचंद्र जी एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप कर रहे हैं। पशु पक्षी पुष्प लताओं झरने आदि से एक अबोध शिशु की भांति श्री सीता जी का पता पूछ रहे हैं। अनुजी लक्ष्मण जी उन्हें धीर बंधाते हैं। इस प्रकार चलते चलते उन्हें घायल अवस्था में गिद्धराज जटायु मिलता है, जो उन्हें बताता है कि हे प्रभु, जनक दुलारी सीता जी को लंकापति रावण बलपूर्वक ले गया है। इतना कहकर जटायु प्रभु श्री राम की बाहों में प्राण त्याग कर उनके धाम को चला जाता है। गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक करके श्री रामचंद्र जी आगे बढ़ते हैं।

श्री रघुनाथ ने शबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। श्री राम जी बोले, हे भामिनी, सावधान होकर 9 भक्ति सुनो। प्रथम भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग में प्रेम। हे भामिनी, गुरु के चरण कमलों की सेवा अभिमान रहित होकर करना मेरी तीसरी भक्ति है। और कपट तजकर मेरे गुण समूह का गान करना चौथी भक्ति है। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में अटल विश्वास पांचवी भक्ति है। इंद्रियों को वश में करके निरंतर संतों के धर्म में लगे रहना छठी भक्ति है। संपूर्ण विश्व को राममय देखना और संतों को मुझसे अधिक महत्व देना सातवीं भक्ति है। और जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना तथा पर दोषों को न देखना आठवीं भक्ति है। कपट रहित होकर मेरा भरोसा करना, हे भामिनी, मेरी नवीं भक्ति।

प्रेमी भक्तों, श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी आगे चले। राह में श्री रामचंद्र जी अनेक प्रकार से विलाप करते हुए जा रहे हैं, जिनका नाम लेते ही मनुष्य समस्त दुख संताप संयोग वियोग से दूर हो जाता है। आज वही गुणातीत श्री रामचंद्र जी एक साधारण मनुष्य की भांति लीला कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं राम की लीला राम ही जाने। दोनों भाई चलते चलते पंपा नामक सरोवर के निकट पहुंचकर सरोवर के शीतल जल में स्नान करते हैं। तभी वहां देव ऋषि नारद जी आकर श्री राम जी को प्रणाम करके वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं, वे सब जो एक से बढ़कर एक है, तो भी हे नाथ, राम नाम सबसे बढ़कर हुए। तब श्री रघुनाथ जी एवं अस्तु कहकर नारद जी को

भक्ति का मार्ग ही प्रभु को पाने के लिए सहज उपाय बतलाया गया। कलयुग में प्रभु को पाने का तीन रास्ते ऋषियों ने बतलाए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ज्ञान और कर्म का रास्ता पकड़कर हम इस घोर कलयुग में सफल नहीं हो सकते। ये कलयुग के लिए केवल भक्ति मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है। भक्ति के लिए समय, स्थान, जात पात की कोई भी पाबंदी नहीं।

अति सुंदर अति सुंदर। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, भगवान हमेशा आप

ने सुने कैसे बदलाव आए संगीत में। उम्मीद मत छोड़ो मेरे दोस्त, उम्मीद मत छोड़ो। जब आपको लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी तभी भगवान चमत्कार।

बैठ नहीं जाते हैं। भगवान उनका हमेशा सहायता देते हैं। खुद हेल्प अलेन दखेन दिस एक सेल्फ हेल्प। खुद हेल्प अलेन दखेन दिस एक सेल्फ हेल्पन। दैट विल सेगन दखेन दी फोरड्यूरेंड ब्लाइवन प्रोबेरन एंड नीट इन वन होप ऑफ गेवन।

संकट मोचन बजरंग बली के भी उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम होवे।

सूर्यदेव के सादर प्रणाम हुए जो हमें ये खूबसूरत दिवस दिया है देखने के लिए। करो दिन के शुरुआत मधुर वाणी के साथ में।

से आप ये भजन माला प्रोग्राम श्रवण की है। ईश्वर को जिससे जो कराना है वो करा लेता है। ना हम श्रेष्ठ है ना हम खास है, बस हम ईश्वर के दास है। इस प्रोग्राम को देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। इस वक्त के स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार।

प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आकाशवाणी रेडियो फाहुन के सुनने वालों, आप सभी को हार्दिक से स्वागत हो।

से कुछ भक्ति गीत आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए। आरंभ करते हैं हनुमान चालीसा के साथ।

राम सभी को भी यहाँ से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन से आप सभी को भी जय जय हो। हनुमान चालीसा के बाद आपके लिए प्रस्तुत है श्री गणपति जी के वंदन।

अति सुंदर, अति सुंदर सुंदर गणेश भजन आपके लिए, गणेश वंदन आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, कहते हैं कि 1 2 3 4 1

संप्रद भरपूर होवे। जीवन में हम सभी को हर कदम पे सफलता मिले।

रहा हूँ धूप में तो विनायक तेरी छाया है, चल रहा हूँ धूप में तो विनायक तेरी छाया है, शरण शरण तेरी सच्ची है, बाकी सब मोह माया है। अगर साफ नीयत से मेहनत की जाए, अगर साफ नीयत से मेहनत की जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देते हैं। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारे मंगलमय दिवस पेश किया जाता है।

प्रार्थना जो है गणपति जी जरूर जरूर से इसे सुनेंगे। आप प्रार्थना तो करो आपके जीवन में, आपके जीवन में हो सुख समृद्धि मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके जीवन में मेरे जीवन में हो सुख समृद्धि खुशियाँ और प्यार की बौछार हो। ये पल ये तारीख ये दिन आपके लिए मंगलमय हो।

अवश्य श्री गौरी नंदन को अवश्य हम वंदन करते हैं। गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश जी के द्वार छन कुछ ना कुछ उन्हें जरूर मिलता है। गणेश जी की कृपा अवश्य हम सब के ऊपर रहे। कहते हैं भी गणेश जी का रूप निराला है। गणेश जी का रूप निराला है। चेहरा देखो कितना भोला भाला है। जब भी हम पर आए कोई मुसीबत गणेश जी ने ही तो हमें संभाला है। गणेश जी की कृपा से हर दिन फलदायक।

अवश्य हमारा गणराज जो है हम पर अवश्य दया करेगा। अच्छे ख्वाबों के साथ सोना, अच्छे ख्वाबों के साथ सोना और नई उम्मीदों के साथ जागना, करके जग का दूर अंधेरा

अवश्य हमारे गणपति जी को आना ही होगा। हम पुकार करें और गणपति जी ना आए ये नामुमकिन है। हम पुकार करें अच्छे दिल से, साफ दिल से, प्रार्थना करें, जरूर से हमारा गणपति

कृपा भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहे हम सब पर, हर कार्य में सफलता मिले, हर कार्य में सफलता मिले, जीवन में ना आए कोई गम।

गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है। जी हाँ, गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों में सरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश जी के द्वार, कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। आप सभी को ये पल, ये दिवस बहुत सारी बधाइयाँ हैं। गणेश जी की कृपा से हर दिन मंगलमय फलदायक होए। यहाँ से हमने एक गोटा लगाई है, नर नारायण को, प्रभु को पाने को। दौड़ हमने तो बांधी है, तो जरूर से ये दौड़ बांधे रहेगा अपने प्रभु से।

अवश्य सबका मंगल होए। जिंदगी दो पल की है, जिंदगी दो पल की है, मजे में जी लो। वक्त वक्त की बात है मेरे प्यारे सुनने वालों कि वक्त वक्त की बात है यहाँ सब, इसलिए कल को छोड़ो आज में तो जी लो। प्रथम पूजनीय भगवान गौरी पुत्र गणेश जी की कृपा से हम सबका दिन शुभ और मंगलमय होवे। ये भक्ति प्रोग्राम आपके लिए पेश किया गया है अपिका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से। देने सुनने के लिए आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। स्वीकार कीजिए यहाँ से सेविका शांता की प्यार भरी।

और यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा मस्ती करने के लिए, थोड़ा से क्योंकि आपका वक्त है।

हाँ भैया चलो देखिए आओ कैसे शांति सब खो दे है पंप इन द सैंड। बहे अखियों से धार आपके लिए, थोड़ा झूम जाइए।

बहे अंखियों से धार, तो क्यों अंखियों से धार बहवाते हो और दिल तोड़ के आज के दिन कहाँ जाते हो? ऐसा तो ना करो,

ललते मुसाफिर ले लिया रे। मैं कहती हूँ आज यू यंग बैंड हेव मीट आज यू वट ओल्डर बैंड। या द इस बवेगन हेल हेल एरग बलांगरेक ब्लेव इन बवेगिंग वंट हत लिखा मुट फ्लेक्सिबल सेन एन आज हत नीट फ्लेक्सिबल इस दान इस दात अम प्रोब्लेम मेट हेल फील दिंगस दात यू मीचे स्ट्रूफ हत लोपे एन बै इन ऑफ अंदर बवेगिंग दात यू दान pijn gaat hebben. En dat moeten we niet dus. Fahon Radio die helpt u ook bij deze om in beweging te blijven op dit speciale dag helemaal voor u.

अनिल दिसंबर के आवाज में भाई दिन न जवानी जिंदगी को खुल कर जियो मेरे दोस्त, जिंदगी को खुल कर जियो, क्योंकि ना वक्त वापस आता है और ना ही जिंदगी दोबारा मिलता है।

0: Go Cool op 00597875739. In Nederland 06 574 18873. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: जी हाँ मेरे प्यार सुनने वालों, यहाँ से विज्ञापन हमने श्रवण की है और प्रोग्राम आपके लिए यहाँ से जारी रहेगा।

ये सुंदर सा गजल गजल पेश किया गया है मेहंदी हसन जी के आवाज में। फिल्म का नाम दो राहा। आपको प्यार भरा एक खुशियां भरा दिन हो।

मुकेश जी की आवाज में यहाँ से श्रवण कर रहे हैं सुंदर सा गीत। शनिवार के सुबह की कार्यक्रम आज 5 तारीख सितंबर

मुकेश जी की आवाज़ में फ़िल्म का नाम मिलाप और ये फ़िल्म मेहंतीन त्विंसी फंतख में पिक्चराइज किया गया है। कलाकार इसमें शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय जी।

चलम प्यासा से ये सुंदर गीत आपके लिए पेश किया गया मेरे प्यारे सुनने वालों हेमंत कुमार जी के आवाज में। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार को प्यार मिला।

बेशक आपने पुकारा और हम चले आए। मोहम्मद रफी जी की आवाज में साथ दे रहे थे सुमन कल्याणपुर। मैं देख रही थी कौन सी फिल्म से है। फिल्म का नाम राजकुमार, राजकुमार फिल्म से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है आप ही के लिए। याद न जाए बीते दिनों की, मोहम्मद रफी जी के दर्द भरी आवाज में हम सुनेंगे।

याद न जाए बीते दिनों की, मोहम्मद रफी जी की आवाज में म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जय किशन और गाने के लिखक है शैलेंद्र जी। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर, जो नेहन 3/63 में पिक्चराइज किया गया है। नियत कितने भी अच्छी हो, दुनिया आपको आपके दिखावे से जानती है। और दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला आपको नियत से जानता है। और ये एक खास बात है कि विश्वास करने से पहले लोगों को अच्छी तरह परख तो ले। क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां नकली

लिए दिया जाता है। तो विश्वास करने से पहले लोगों को अच्छी तरह परख लीजिए।

मेरे प्यारे सुनने वालों, आप इस गीत के जो आखिरी कमाल सुने ना, इसके बनाने सजाने में बहुत मेहनत लगता है, सुनने में इतना आसान इतना अच्छा लगता है। फिल्म का नाम कश्मीर की गली, कश्मीर की गली, रफ़ी और आशा भोसले जी की आवाज़ में। लायरिक्स गीत का लेखक है बिहारी जी और म्यूजिक जी इसमें दिया है ओपे नैयर। स्टारिंग फिल्म के स्टार कास्ट जो है शमी कपूर और शर्मिला टैगोर। जिंदगी, जिंदगी वो हिसाब है मेरे दोस्तों कि जिंदगी वो हिसाब है जिससे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, अपने आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें।

जगजीत सिंह जी की आवाज में यहाँ से श्रवण की है कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। मैं भी यही कहती हूँ कि जिंदगी में जरूर से मुस्कुराते ही रहना, कि जो गम भी आए तो वो आपके मुस्कुराहट देखकर और जल्दी से रवाना हो जाए।

फिल्म धुरंधर से ये सुंदर सा गीत हमने सुने हैं, आज के प्रोग्राम में शामिल किया गया है अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में।

एस रावत, नहीं, म्यूजिक दिया है पी एस रावत और संगीत का लिखने वाला है शैतान सिंह। शैतान सिंह ये गीत लायरिक्स जो लिखे हैं और गायक है प्रकाश रावत, प्रकाश रावत जो रावर, जी हाँ, दिल में

अच्छा लगता भी ऐसा नया संगीत सुनने के लिए, और ये सब सेलेक्ट किया है आपके लिए और पेश हो रहा है अभी का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

0: very very nice, very very nice. सुनने को
1: सारेगामा कारवा द परफेक्ट गिफ्ट फॉर
0: सुनने के लिए बहुत उकसत रही आप भी, आपने फोन करके और कहा तो यहाँ से आपके लिए

धुरंधर फिल्म धुरंधर से रणवीर इसमें अपना कला दिखाए हैं। इस बार सुनेंगे सयारा से।

इस बार है ये आंखें गीत का बोल है।

ये आंखें गाकर सुना दी हमको शाहिद मालिया। शाहिद मालिया की आवाज़ में ये सुंदर गीत हमने श्रवण की है और गीत का लेखक जो है शिल्पा अग्रवाल ये लायरिक्स जो लिखे हैं भी सुंदर लगता है सुनने के लिए ये नए गाने जो हैं। अपना रंग है, अपना चमक है। समय रुकने वाला नहीं है, जो रुक जाओगे तो पिछड़ जाओगे, अंतविकलिंग में पीछे रह जाओगे, पर समय तो जाएगा, तो वक्त के साथ चलना है, यही समझदारी है।

दूंगी हो माही रे, कलाकार इसमें है शाहरुख खान, ये आज के दौर के गीत और संगीत है। मेरे बन के रहना तू,

बन के रहना तू पेश किया गया। इस बार हम सुनेंगे अरिजीत सिंह जी की आवाज के। अरिजीत सिंह जी की आवाज में मुस्कुराने की वजह तुम ही हो।

से कटे सजनी तेरे बिन सजना तेरे बिन तेरी याद सतावे। अरिजीत सिंह जी की आवाज में अरिजीत सिंह जी भी कितने शानदार गीत गाए हैं, दिल छू जाने वाले गीत।

ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, सुना दी हमको नजीम और उमर वागित हुसैन। चलते हैं सुनते हैं इस बार फिर है उमर वागित हुसैन की आवाज़ में।

फ्रिंद जो है, दोस्ती जो है, सहेली जो है, यहाँ पर तो आप अपने आप रह सकते हो। मजाक जो है, दिल के बात जो है, तो एक दूसरे से कर सकते हो। और दोस्ती ऐसा होना चाहिए कि ना कि जब दोस्ती ना है तो आपके बात वहाँ शहर में घूमे, ना ना ना, तो वो दोस्ती नहीं। दोस्ती जो आपके बात जो है, जो आप बात करते हैं, अपना दिल के बात करते हैं, वो वहीं तक सीमित रहे। As the sun niet wil schijnen, dan schijn je toch lekker zelf. Zo simpel is dat. En het is uiteindelijk, jij bepaalt je lot elke dag door je beslissingen.

बिक जाएंगे, बिक जाएगा माटी के मोल। बस अच्छे अच्छे यादगार जो है वो रह जाएगा।

एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। और खास बात ये है, ये म्यूजिक जो आपने सुने ये गीत में, ये म्यूजिक दिया है ज्वाला जी। कितना अच्छा बात है ना।

अंबर सरिया सुने हम माइक जेट से। इस बारे गौर पूज गौरी

वनिता वेली गौर पूजा सुना दी है आपको, ले चलते हैं गौरी के पूजा अवश्य करना चाहिए अगर आप कार्यों को आरंभ करने चाह रहे हो। गौरी गणेश गणेश जी को जरूर से पूजे और अच्छा वर पाने के लिए इस पे आप भी जरा सा ध्यान धरे।

झूमो नाचो गाओ जब जब ऐसा कोई पर्व कोई त्योहार आ जाए तो अवश्य ही मगन होकर इसे मनाए। ये तो हर साल आते हैं, पर ये बात होता है कि हम हर साल रहेंगे या ना रहेंगे, इसलिए जो जिस पर्व को मना सके, जो जिस त्योहार को मना सके, दिल खोल कर प्रेम से प्यार से इसे जरूर से मनाए।

What a lovely song, a lovely songer. Mama तरफी जी की आवाज में और आशा भोसले जी साथ दे रहे थे रातों का राजा। हाँ हाँ, रातों का राजा फिल्म का नाम है जी। 1973 तक में ये पिक्चराइज किया गया है।

अवश्य अवश्य नारायणी नमस्तु तुझे। मैं बेशब्द हो जाती हूँ मेरे प्यारे सुनने वालों, आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को फॉलो कर रहे हैं।

दुर्गा मैया तोरा अंगना सुहावन लगेला, वाकई में दुर्गा मैया हमारा इष्ट हमारा प्रभु हमारे साथ है, तो जहाँ आप रहोगे वहाँ सुहावन सुहागन सभी कुछ आनंद में ही लगेगा। प्यारे सुनने वालों, दुआ है प्रार्थना है कि आप जहाँ भी रहे जैसे भी रहे जरूर से खुशहाल में रहे, हंसते मुस्कुराते जीवन को बसर करें।

कलाना जाने जान सरस्वती माता दीजे हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाउन की सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी नाम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारी मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

तो दोस्तों इस ट्यून से आपके तो पता चल चुका होगा कि हम शुरुआत कर चुका है अपना सूरीनाम और देश विदेश के समाचार के बारे में।

हम तुरंत तुरंत तुरंत जानते हैं सूरीनाम के ओर भैया नहीं खनन दर तक यार रख एक अनमन इस इन खस्लोतन फॉर स्टेल्सल माथ का मिसांदन इन कौन क्यों बीने वहाँ पर बाप ओके बिचारा के बन हुई गया रहा एक औरत है अनफ्राउ इन मेरसोर और उब ही बै बीरन हेल्प मांगी सेगा सिपाही लगे शिकायत करी सेगा कि ओकर घर में एठार वोनिंग वेस्ट ऑन स्नापन बोले को नहीं इन दर तक यार के कॉन्क्यूबेन बीएस बा वर्ड इरफान फरदाग हर स्टेल्सलमातिग ते हैबन मिसहैंडल हर मोबाइल टेलीफोन ते हैबन खपाक एंड हर इन हाउस हैबन अफ्कस्लोटन ओके घर में औरतिया के मारत रहा भैया और जहलनेस ओके घर में ताला कर देवत रहा सनीचर की नीहनन ट्विन द कॉक्सिस के बात है एंड इट लिख ना दैट द पुलिस एन मेलनिंग करी दैट अ स्लाखतोफर फ्रॉम मिसहैंडलिंग सिख ऑफ एन एड्रेस इन द रिसॉर्ट बफोंड द फ्रॉ हर हट वोनिंग वेटन टू फलांटन एट was naar de buren gegaan om hulp te zoeken. De kono rakam op een ghar me se bichari nikar ge. Aur buren lage geil het de hulp aanvraag kari se. Bole volgens het voorlopige onderzoek beschuldigde verdachte zijn kon kubine ervan dat zij overspel zou hebben gepleegd met een vriend aan wie hij ongeveer een week eerder onder dak had geboden. De vrouw ontkende die beschuldiging. Aur diabole ietsje na hoe ze kehe. Aur ook er kon kubine jo raha भैया बोले है का कोनो दूसर से एक लफड़ा रहा ते एकर बारे में सिपाही जो ना पुलिसी रिहो ओ सूरीनाम के और बोले गैल है फॉर फॉल्कस टेल्सन मातक सो हेवन में सांदल अब इन अख मोमेंट सो है ओ खार टेलीफोन हेवन आपको पाक में से ये अच्छा बात ना है अनखिफ्त भैल है अब बोले फरदाख्त नोक दिख सेल्फ द आफन रुके से मैं पकड़ ले सेगा जो न बोले नसान भूत रहा भैया अंदर अने अल्कोहल रहा अने Verkeren, hulpofficier in elkaar pakken en bankeren. Zijn vrouw kreeg een medische verklaring op haar naam en werd voor behandeling doorverwezen naar de plaatselijke artsmensen. Te ibahu dukke baant he. Ki i kam kari se demia pakken en bankeren raha. Aur dekho bhaiya ek brown fixer, bhaiya ek brown fixer he. Bole he ga aan riding kari se aur jai ke gotro me ghus ga bhaiya balant in an khout. Dukke baant he bhi he, donderdag ke baant he. Ego met zijn twee wielen ben ik op een fiets gegaan, meer vel weg mee. En ik ook een rijding kerkje, ja, ik heb een ambulance bijzara gelegen. Natuurlijk zie ik een huis om te gaan, DNV ke bare mein. Waarschuw correct zijn naam, ke veiligheid dreigen herkennen voordat de crisis uitbreekt. DNV, toen ik jane kontje, bhaiya, DNV, ke matlab jane hai, onze veiligheid ke hai ga, Directoraat Nationale Veiligheid ke admi hai, is juist een proactieve werkwijze nodig. Waarbij risicovoertuigen vroegtijdig worden herkend en informatie tussen veiligheidsorganisaties beter wordt gedeeld. De sipahi is een directoraat nationale veiligheid gewijzen. Satisfied bole he dosto uitgang staat centraal tijdens de nationale veiligheidsconferentie ke 10 tarik aur 4 tarik september mein congress hall mein sabne ekar bare mein baatchit kar raha minister bhi wahan paega fun justice and policy aur md kilfep bhi wahan pe ba aur communication this bhi wahan hai conference pe bole he ga het onder meer om criminaliteit transnationale en ondermijnende criminaliteit, cybersecurity, maritieme veiligheid, energie, bolle kritieke infrastructuur, economie en voedselveiligheid en zekerheid. Waarom is er een hoa baatjeet kerise janta? Hanis Manorat, hoa minister van Justitie en Politie kerha, bolle hega verwacht kereke bijeenkomst, bolle hega overleg blijft, o bolle hega waarnemer DNV-directeur John Hega, Major Gerard Kalka, stelde de veiligheid van het land alleen effectief kan worden beschermd, bolle wanneer betrokken instanties dreigende eerder signaleren en gezamenlijke handeling. Toe je baant hega DNV ke bare mein hamari janta jo aap log ko hum bata dete hain.
अब देखो भैया, एक 75 यार के 75 यार के गाड़ी चलावत रहा भैया, और जाए के वो 17 बरिस के लुंडा के ओतो से मारी से लड़कवा मर गए है भैया। 75 यार के रमिया रहा 17 बरिस के गो लुंडा पर ऑफिस चलावत रहा। बोले ऑटोमोबिलिस बतरोकन वास बेन आन रहे दे फन हो को हिस्ट्रा 75 यार खबर ऑफिस से बेचारा मर गए बड़ी दुख के बात थे इन डर तक हो के। और बोले ब्रोफिस्टर हो फन हो कस्तरा से उजात रहा मूलन पात पे नर द हाफन लान जात रहा और ये रमिया गैल है। और बोले एक ऑफ दैट मोमेंट में से ऑटो का पार्केर और फिर बैरम रहा जैसे द ब्रोफिस पात एंड ऑटो पात के बीचों में पार्केर कर ले रहा। और जब ब्रोफिस हुआ अब जात रहा द ऑटो देख वास बखना द रीड ऑफ ऑटोमोबिलिस वेग ओम अन इट फरकेर दिल त नहीं मन वो घुसल जाए के ऑटो वाले के मांगे फरकेर वाम जाए जो ब्रोफिसवा के और ऑटो बनवा के बिचुआ पर केयर कर ले रहा। फोलकर सिर नाम से पुलिस फरलीन ने बस्तूर दार में खेन फोरा आने ओवर का फरकेर है मार्कते अन बोख ना रेक्स में द बदुलें फिया द दौर ब्राक द वेस्टलक रई बांत बराई दार में और स्टोंड आंध रेडिंग में द ब्रोफिस और बिचारा मर गए है 17 बरिस के आंचे नी ओपले द खाद दे सोर दिंग इसको ब्यूरे में से। तो ये बड़ी दुख के बात है। अब देखो एगो 24 बरिस के औरत भैया ओकर ओके कितना छुड़ी मारी से सबन फिरन त्वेंत किया रखा मन स्टेक एगो फिरन त्वेंत किया रखा आदमी अपन फ्रिंद के फ्रिंदेन के छुड़ी से बहुत भोंकी से नानी ब्रोको पोंदो के बांधे। और ब्रोको पोंदो में एगो दोरपू के नाम बा द्रिपदा झगड़ा भैले भैया अंदरीशी ओवर सेक्स इन दौरब एड खोलो ऊपर एरस्ट जहां यरमिया पर द्रियन तो रख यार का फ्रेंडिंग के और छोड़ी से बड़ा भोकाई भोकी से 27 तारीख ऑगस्टस के बात थे हमारे नानी। तो ये भी तो दुख के बात है दोस्तों। सिपाही पकड़ के ले गए हैं और बोले फोर वेयर भी मिल गए हैगा अकादमी में फिर तो रख यार का रमिया के पकड़ के बन भे ना पतावे हैं कि काहे के झगड़वा सेक्स के ऑफर भइल है बाकी वेल लिखल ऑफर सेक्स इज दिस कबीरत में से। तो ये मांत है सुरीनाम देश ब्रो को पुंदो के gedetineerde भैया vinden kluis tijdens schoonmaakwerkzaamheid gedetineerde John Jahliwa ne भैया schoonmaak करत रहा कहां पे वेख ना रही बैरक में हूं आप ऐसे बने को क्लोइस पाई से जहलीवन पाई से भैया और काम करते में पाई से यहां पे सिपीर लोन भी अनवेशक रहा। और बताए गए क्लोइसवा में 5x5 सेंटीमीटर के उतरा बढ़का रहा द क्लोइस फर्तून द खींच से बार स्पोरन फॉर फोर्सेरिंग इस फॉर आल्स नोक नीट का ओपन कहानी खाली है ना रहा भैया लेकिन कलांटी में लिखाई गई है एगो क्लोइस मिलल है हमारे जनता। तो जो क्लोइस मिलल मिलनी सह की उमा उमा पैसा रहा कटलिस के कटौल भैल है नानी कटलिस के कटौल भैले नीखन 3 यार का फरदाख्त एगो नीख ससन डर तक यार का आदमी के कटलिस से खूब छपकी से भाई बड़ा कटाई काटी से ये भैल हैगा फ्लोरस स्वकंस्त्रात में झगड़वा भैल है नहीं खतिन यार के एगो लौंडा जाए के एक बड़ी कटाई काटी से झगड़ा में कटली से निकारी से बन खिलवाड़ ना करे श्री नाम देश में भैया कटली से घास उस काटे की सब मनाई हुआ काटे के शुरू कर दे इसे एक बारे में सिपाही पकड़ कर के ले गए हैं। अब देखो का हुए है और का ना हुए एक बारे में हमारी जनता। आप लोग की ओर हम जा रहे हैं उलर्स की ओर उलर्स के ओर हम जाएगा जोन फे यहाँ पे के अंदर फोर्सेटर वार नेमस फोर्सेटर है दोस्तों। और फे यहाँ पे फोर्सेटर ग्लेन उलर्स बोले हैं तू जाने हैं हूँ आप ऐसे बन के फर किसी हुई कि पार्से फोर्सेटर के हुई तो इस समय पे फे यहाँ पे फोर्सेटर हैगा ग्लेन उलर्स स्लाइड नीट आई दैट है ना है पेर्स पार्टे कांग्रेस जो मई में होगा 2027 में अब न्यू फोर्सेटर फॉर द पार्टे वर्ड इन इंटरव्यू स्टैंड फास्ट रेडियो पे बोली सेगा कि बोले कि वो होएगा उलट बना दरकत दसे है देखो फोर्सेट स्काफ खीन इंटरन
interne functie is hij naam na het overlijden van Janssen, zo kreeg de voorzitterschap. Orbele Oeders ligt de prioriteit momenteel bij de voorbereiding van het congres. Op Kehoi Kenahoi, een verkiezing met Kejitiga, Oeder Matura Mange, Oeder Kabole, Janneke Gayadine Mange, Oeder Bhaya Sharman Mange, Ieder Oelers Mange, over zijn eigen toekomst houdt Oelers de mogelijkheid open. Oelers waarschuwt tegelijkertijd voor een vroegtijdige interne verkiezingsstrijd. Volgens hem kunnen de vroege kandidaturen leiden tot verdeeldheid binnen de partij. Hij pleit ervoor dat de potentiële kandidaten zich eerst door hun inzet en werkzaamheden binnen de VHP profileren. Mensen, beleidsvisie John Maika strategie van richting 2030. Toen janta IVHP kebare mee aanplukken hem. Thora se betaalde li. Hem jij ter buitenland. Minister Tsjechië onder vuur door interview met vermomde activist. Tego Janneke Tsjechië, de minister van Buitenlandse Zaken. Ook is hebben onder vuur gekregen van jou, omdat we een interview kregen. Ik wil omstandigheden meedeed aan een nep interview. Activist. Groep deelde beelden waarop te zien is dat minister Makinka tegenover een man zit die een bifa muts en zonnebril draagt. Interview was een actie. Orbolega die zich presenteert als een groep onderzoeksjournalisten. Willen de activisten stellen dat de minister laks omging met de veiligheidsvoorschriften. En zijn enige lijfwacht wegstuurde zonder de ruimte te laten controleren. Daar zouden nepwapens explosief verstopt zijn geweest. Ichakeke baanchit hue hamare janta Nederland verplaatst 10 miljard dollar aan goud uit de Amerika. Maar kahe ke janta 10 miljard dollar uit de VS. Maar kahe ke hialikal in Nederland miljarden dollar ke sona Amerika, Canada met sub or koninkrijk. Canada en Amerika met hellera ab sub mange jij. Verenigde Koninkrijk met dhare Engeland mee. Maar ki kahe katin. Kahe mange dhare Nederland ke besitting 83,7 miljard dollar ke sona in binnen- en buitenland ke reserves. Dhari se centrale bank joan hega Nederland ke budhwar ke bole verhuizen we sab chijuan bole ernstige crisis ba. Hoewel DNB niet specificeerde welke crisis er zouden kunnen zijn, voert Amerika momenteel een felle handelsoorlog met Canada. Is het verwikkeld in een oorlog met Iran en heeft de recent militaire operatie geleid in Venezuela en rond Cuba? Toen je betaalde Canada se en Amerika se een grote probleem is. En ook maar eens een nieuwe gaskave, zoals je betaalde. Daarnaast zijn de spanning Europa Amerika se gaan toegenomen sinds het begin van de Amerikaanse oorlog tegen Iran in februari. Trump ontevreden is over het terughoudende optreden van Europese bondgenoten. Kebare mee. En president Jonne Olaf zei in de verklaring: Bole Hega, Nederland bezit 612,4 ton goud ter waarde van 72,2 miljard euro, 83,8 miljard dollar. Die goud dient als onderpand in tijden van crisis, wanneer reguliere financiële systeem kunnen vallen. Oei, Nederland ook het risico als onderpand. Kun je crisis uit ook een gebruiker pijgen. Landen spreiden hun goudreserves over verschillende locaties als onderdeel van de risico diversificatie kebare mee. Toen je betaalde hoe het goud verplaatst zal worden, mensen, verhuizing betrof goud ter waarde van 10,11 miljard euro eind 2025. Dit bedrag was op woensdag 1 uur Nederlandse tijd 10,34 miljard euro waard, mensen. De KC-vers 59 ton goud gebaantje te hebben Argenta. New York zich gevolgd door aankoop in Londen. Daarnaast werd meer dan 27 ton goud, ongeveer 3,84 miljard dollar, fysiek aan Amerika en aan Canada naar Zeiss getransport.
gerapporteerd een vergelijkbare hoeveelheid te op je transport bhaiya ta churu unke to aankhi phar phar phar phar phari ki kaise hum kar le tulan jano uske fall pe 197 kitna sona loote raha bhaiya and it was a hele grote bende dat weten jullie mensen ab ki kaise kari kuch pata na hai kaise kari kaise na kari hamare janta to ye sab baat hai hamare janta Suriname ke na hai Nederland ke jun sona ke bare mein hai hamare janta तो साथ ही साथ हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर और लेकर जो चलते हैं तो अब देखो क्या हुआ हमारी जनता हम जाते हैं सुरीनाम के मिसी काबा के और भैया शशाल साख के जो यानी कि minister hey, Missy Kabake, bolle we hebben toestemming van RVM, Raad van Minister, om ziekenfondsdirecteur met ontslag te sturen, bolleke ontslag om nun db, roeddrakend omrauke. Roeddrakend omrauke bolle usap, die enkele maanden terug als non-actief werd gesteld als directeur van de staatsziekenfonds en alsnog de gelegenheid kreeg om zich te verweren, wordt toch ontslagen. Ook bolle André Misikaba bolle he, bolle oké hamloon, welzijn van arbeid, ze bolle ook ontslag kalibati, bolle usakwa kerseke, maar die is al ontslagen. Bolle Misikaba boetwaarke, RVM bolle hega, zaak zo wordt aangepakt omdat minister in het verleden probleem heeft gehad met de mensen die zijn afgezet mensen toen op Umrah werd in februari non-actief beschuldigd ze zijn van de sluiten van arbeidscontracten van ruim 100.000 SRD per maand met directieleden van andere staatsbedrijven toen Jezep hij baantjeet hij Suriname ke staats ke bare mein अब देखो भैया अफीना बांग का करे मेरे वर्कर्स के बोले गेवन लेगे स्कूल मुर कलररेके मेक ओवर बतावे यहां पे भैया अफीना बांग तो लोन जानो हैगा चिनवा के बांग का सुरीनाम देश में और ये बोले हैगा बोले फ्रीविलिक उस अब इंसेट कर इसे का सेंट ली Litwina school mee. Bolle de medewerkers ruilden hun dagelijkse werkzaamheden tijdelijk in voor verf, kwasten en flinke dossier van creativiteit. Ki usap jahe huape muur verfi kare verfi se school mee. Or bolle, samen gingen zij aan de slag met lege muur op een schoolterrein. Or betawe fina bank draait het. Initiatief niet alleen om het eindresultaat, maar ook om de tijd en energie die de medewerkers hierin hebben gestoken door samen te hadden handen uit de mouwen te steken. तो ये बातचीत है फीना बांग के बारे में हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा जनता जो आप लोग को हम बता देते हैं हम चलते एक गीत की ओर

भजैली है और बोले क्या क्या नहीं आते हैं, तो आपको हम ये गीत को बस सुना ही दिया है। हमारे प्यारे प्यारे जनता, हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर। देखा जाए भैया, न्यू पॉलिसी पोस्ट एगो आयल है सूरीनाम देश में, और ये है अर्थखान सेंट्रम परमारिबो मुस्नेलर ऑप्ट्रेडन में इंसिडेंटन मोखलक तमाकन, और एगो कंटेनर ने से एगो बन बनाई के सबन धरी से ये बातचीत हो रहा है। और परमारिबो में ये बातचीत हो रहा है। हमारे जनता volgens het korpspolitie is het vestiging van hulppost besloten vanwege drukte en toenemende activiteiten. Ke bare mein hai yani paramari mein bhaiya tu jane hai kitna chor chohari hai tu tulon to jano hai to ohi ke karan yani ki extra police post aayge hai हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो अब देखो कमा है चिजुआ कि चिजुआ ना कमा है मौसी, वही तो बतिया है, वही तो बतिया है। पुलिसी पोस्ट तो आयल है, आप देखो कमा है कि ना कमा है। तो लोग जानो चोर चहाड़ी शहर में कितना घूमे हैं। सोमेल रेगिस्ट्रांत में आयल है गो पुलिसी सिखबार अनवेशक इस एन बे इंसिडेंटन इन ए ड्रग आउटगांसगेबी स्नेलर कान इन बखराइबन। और बताए गए हैं दोस्तों फॉल्गंस हेड कोर्स पुलिसी बोले नो साकल खेगा। होफ इंस्पेक्टर जेहरे सरवन कुमार कासी वार्नेमत हो फन कैबिनेट फन रिसोर्ट कमांडर फन परमारिबो बनाद्रक्त दैट द हेल्पपोस्ट जस्ट इन दिस ओमगेविंग इज ऑपगेसेट ऑन पुलिसी डिक्टर बाय हेड पब्लिक टू ब्रिंगर आउट जाने सोमस डेज के है वहां पे तो जाने कितना ढेर घूमे। तो भैया का बोले हैगा स्वर्फर्स एंड सो तो मां ओही के बीच में से बंधरी गए के का बोले हैगा एगो एक्स्ट्रा पुलिसी पोस्ट ना द टू स्प्राक वे द स्लीटल फन अ न्यू पोस्ट सिंबोलिस ओवरगेड्रागन वर्फोल्गेंस क्रिप्ट मनोरत vervolgens knipte menoret over ik er waarin bolle parlement aanwezigheid in uitgangscentrum moet de politie beter in staat zijn toezicht te houden bij de openbare minister. De abdeko ichi joa kama hai drugs ke baare mein teri aap log ke suna di bhai drugs ke baare mein hum bolite log ke kuch sunai di

जी हाँ दोस्तों, तो हम आप लोग को बता देते हैं कि और आगे क्या क्या होता है वृक्ष के बारे में। विरोक्ष तालचस में दुर्लभ बौद्धम ऐच सुरीनाम ई कौंची भैया सबन पाई से वृक्ष ऑन दैट इन विरोक जो हम लोग विरोक बारे ला भैया जो नदमी अपन घर में विरोक बारे पूजा पाठ खात वो कर खातीन विरोक्ष तालचस में दुर्लभ बौद्धम ऐच सुरीनाम आई ला। अब देखो कौन चकल से नीदरलैंड के दुआने पकड़ी से ऑन लाग वृक्ष आन खतरोफन दी बेहद बिसोंदर मनीर एंड वार फर्स्टॉप एगो विरोक्ष खालचस में छोटा छोटा कोमकी है जो विरोक बरे है द खालचस ब्लीक एंड द सैन फोर सी फन दुबल बौदम वार इन द फॉर दो फन मिडल वार इन फॉर बोरखन दुई दुई बौदम रहा हमार भैया विरोक में दुआ न मांगते द फोंस ब्लीकन बकेन फिया फेसबुक और बोले फोटो फन ऑन द स्केप्ट खुदरन देश विरोक ओवर स्कालचे ब्रखतन ये हील en het bracht je wel heel snel en hogere sferen. Heb je kon hier wat aanwezig? Nederland ke douane kahan kahan pawe, bhaiya? Drugs, flashes, date me pawe hai, blandre me pawe hai, kukuhi me pawe hai, kalabu me pawe hai, palam daru me pawe hai, jurmachri me pawe hai. फ्रुख्त में पावे हैं, ढोलक में पावे, इंस्ट्रूमेंट में पावे हैं, कैसबरोद में पावे हैं, सिर खुद में भैया जो वहाँ पे आम उम सिर में धरन ओमा पावे हैं, नरियर में पावे भैया, पिंडा सांबल में पावे हैं, पॉपकॉर्न में पावे है, झूर मछरी में पावे जो सब सुरीनाम से आवे है। बड़ा शर्म लगे भाई बतावत बाकी नीदरलैंड से पुलिस सब चीज में पावे है। अब जो नदमी मांगी भैया सच्चे के बनरियर पिए पिंडा सांबल खाए सब देखिए फरबूद हो जाए हम लोग कौन ची मिलावे द आंख त्रोफो फरदूफ ने मिडल से हिंदू ने नीदरलैंड ऑथोरिटेट इन बसला खनोमन इन मिडल फर्नीतर और बोले एर्दर ऑनडर्स को स्केप्ट नीदरलैंड से दुआन ओक al drugs verstopt तो ये बड़ा अफसोस के बात है कि हमारे देश में देखो भाई सुरीनाम से पैसा कमाई खात कौन ची ना एक सब करे तुलन जैसे जानो है हम लोग के नीदरलैंड में फियोत है ऐसे सुरीनाम में ग्लात है दोस्तों ऑनडरसुक बस्कुलकिंग बे तास लैंडफेल वक्त रिजल्ट नाफ एगो लैंडफेल हैगा भैया वो बतावे हैगा राफा मिनिस्टर के वेंडी यप आयु डायरेक्टर बा टेलीकम्युनिकेशन के ऑथोरिटेट सुरीनाम के बोले तास बोले तो स्कॉर्सन नीत हीव को होनोनेर मुटन सोवेल द डायरेक्शन आल्स राड फॉर कमिसारिस फॉल्क्स मिनिस्टर रेमोंड लैंडफेल फॉर ट्रांसपोर्ट बोले हैगा कम्युनिकेशन एंड टूरिज्म इन वर्कसामहीदन फोरसेटन और बोले यापायु फॉर मन में बस्कुलके वनाउट द एरवीएम ओक एन एगा रेक्सा हीव आंगेस्पानन टेगन द लीडन फॉर द राड फॉर कमिसारिस बोले द आउटकम्स दरफन मुट फॉल्क्स एंड वर्डन अफगेवाग्ड तब बोले ग्लात अंडरसुक करेगा ऑन सेकंड ऑफ द बस्कुलकिंग ऑफ वार है बरिस्टन और बोले हैगा ग्लात अंडरसुक हीव एरवीएम एरवीसी के राड फॉर कमिसारिस के बोले लैंडफेल मोगलिक एगो अकाउंटेंट दी दार बाय इस इंटरसेप्टन फॉर अंडरसुक तब लेगा अकाउंटेंट के जहां जाए के हुआ खोजे के लैंडफेल वेस अंडर मेयर op wet elektronische communicatie die al geruime tijd bij de Surinaamse nationale assemblee ligt en momenteel wordt bestudeerd om na te gaan waar verbetering nodig is. To je maakt het glad ke bare mein bhaiya dekho Leo Brunswijk ka bole Brunswijk ke bhai bhaiya in feite moeten we stroom van DNA afsluiten. Hoe hebben ja? Bole, hem lukt het jij DNA ke bole in feite stroom wat banker dek omdat onze paisa na barise. Nationale Assemblee ke bole he. Hoewel, bole ABS nog moeten betalen. DNA ke jij ge bhare ke. Hem bole na bhare he. Voordat de gekke dingen uitspreken, Leo Brunswijk, algemene directeur he. EBS के अब बोले हैगा EBS फ्लिंग बस प्रोकन इन डीएनए
बोले हम लोग चाहिए एक रेस्टोरेंट मुआ बंद कर देवे के Brunswick बोले दे नामे बोले से हैवन सो फील खबावन एंड एयरकोस लाते से आंतोनन वाने से फॉर द लास्ट केयर हिन बतालिंग हैव खदान मेरे तो Brunswick को बोले इतना एयरको हुआ चले है चिराग इतना भरे बोले बतावे कब सब लास्ट पैसा हम लोग के भरी से Volgens de EBS topman is het probleem van het tekort aan stroom niet een probleem van vandaag. Parisiens zijn zo'n paisana bare he. Toekomst uitblijft op het probleem op te lossen moeten we meer stroom opwekken. Vanwege de drukte lukt dat niet via het stuurmeer. Bullet 2024 hebben we aangegeven dat het geïnvesteerd moet worden. Maar er gebeurt niets mensen. Op Bolle Hega, ja, Brunswick, Bolle Hega investeren uit het probleem te komen. $500 miljoen. Maar dat geld is niet in één keer nodig. ये बात है चिनुआ के कैसल भैल है मौसी चिनुआ के कैसल भैल है इंदिरा गांधी वैक में दुई चिनुआ भैया विंकलीस और विंकल दीप का कैसल चिरवन दुई को चोर के अपन दुकान में पकड़ के बंद करी से द विंकल दीप werd bij een supermarkt belacht en vervolgens meegenomen naar een adres aan de Magenta Kanaal. Obele, al daar zou men het gestolen geld gaan ophalen. De politie kon de twee Chinezen aanhouden. To Kitra en mijn social media bolle Chinoen mooi kam krijse, chorke pakrijse, maar Chinoen apresco toemangen kelep hij, dat gaat niet gebeuren. En dan hebben de politie de twee Chinezen aangehouden, want die zijn bij de Magenta Kanaal mee. Bolle, hamlo jayla paiswa lawe. देखो एक औरत भैया minderjarige kinderen op straat aur me sandal bhai lego aurat for minderjarige kinderen oka choti choti ladkan oka saath hai aur oke saban me sandal kais ego admi sondag ke rabivar ke baat hai tam fan adam son straat me nikeri ke baat chit hai bole drama fon plaats in bai sein van twee minderjarige kinderen bole yo ladkan chilad bhai dad ke mare ladkan bhagal hai gaile help khoje aurat ja, bichari, giral parale, viel op een gegeven moment op de grond. Or Ademia, oké, chamoti se khoop, mari se bhaiya, giral aurat ke. Bewoners vinden het vreemd dat de man tot op de dag van vandaag niet is aangehouden door de politie van Nikeri. Uit informatie blijkt dat de vrouw wel aangifte had gedaan van de mishandeling, maar deze gisteren weer heeft ingetrokken. De man kon niet worden opgespoord omdat hij zich vermoedelijk ergens schuilhoudt. De politie zal zeer waarschijnlijk Oortia Nalis Calera bakiw pina aangifte terug lezen. Bhaiya 10,000 admi maral hai. Embola se Congo me nani. Embola se maral hai. Congo me maral hai. Socho bhaiya. Socho. Kitna admi maral hai. Congo me nani. Aur embola ek bimari hai. Ek bimari hai. Jo ne wahan par hai. ये बात है तो एम्बोला से 3,000 आदमी मरल है हमारे जनता और बताए गए ये है का geen vaccin of geneesmiddel Ebola is een ziekte die vooral Afrika में आवे है dat wordt overgedragen via een fysiek contact tussen mensen of via lichaamsvloeistoffen. Er wordt een zeer besmettelijke koers gespoord, mensen. Dat is het. Aanplok kom zo je een giet kusumai. Top hier hem wapens aan inge. Aapke paan.

तो ये है क्रिसवन छेदी के आवाज में आप लोग को हम इस गीत को भी सुना दिया है। हमारी जनता, हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों,

दोस्तों एक फरदख्त सूरीनाम ही में हमी है, तो वहां एक फरदख्त इस आनखौदे फॉर डिफस्टल आईफोन 13 प्रो मैक्स के बारे में है। 25 तारीख भैया एक नी टेलीफोन लेके जाए आईफोन 13 प्रो मैक्स चोरी करके भाग न्यूयॉर्क फोन वेख में। 2 तारीख सितंबर की सिपाहियों के हीरा वेख में पकड़ ली भैया, सोना के रास्ता का नाम है हीरा वेख, वहां पे दौराई के जाए के सिपाहियों के पकड़ी से। तो ये तो बहुत ठीक बात है भैया, मन में खुद फॉर वार्निंग ऑफ कसैत। एक आदमी भैया ओके समझ दागे रहा, अब देखो डायरेक्टर जो है दयालत के आनी सादी ऐस नाम सैफरे खवीजन डायरेक्टर फीका ई के बोले हैं, फीका ई जो पार्लियामेंटारिया से एनडीपी के नेचुरल असेंबली में बोले हैगा, जो फेस क्यूरिंग्स इंस्टीट्यूट है यूलियत वोंगसोरे जो मलाइनी है बोले ओके चाहे ओकर नाम सेफर करे के बोले फोकस हर ब्लैक आइटन ऑन अ फंकलिंग ऑन द सुक दैट देयर गेन स्प्राक इज गवेस फॉर फाइनेंशियल फ्रॉडलेसा हैंडलिंगन टरवेल द फॉरमालिक डायरेक्टर ईर्दर डोर द हुइडिक रात फॉर कमिसारिस मे देयर खलेक बस्कुलकन जो जैन को कॉन्फ्रेंटियर। ते इस सब आदमी के बचावे भैया कि देश जाई के हुआ सुधारे है, ये बड़ी दुख के बात है हमारे देश में। एगो हील खसेन के सिपाही पकड़ी से दबूर बैठे में नानी, खसेन वहां भर के पलवार वहां भर के पकड़ी से आन होल्डिंग फोन इन फ्राइडे 28 अगस्त 2026 प्लांट्स पुलिसी लॉस वार्स की वंश को तो भैया तब पलवार भर के जाए के सिपाही और पकड़ पाई से। तो ये सब बात भी होए भैया और बताए गए हैगा। SLM stop seizoen vluchten naar Barbados per 30 september. Barbados pe jon SLM ure bhaiya 30 september se vluchten ban ho jai. Paramaribo Georgetown Barbados me bole hega vacant ho jayega. Sinam Airways volg aanpassing naar evaluatie van de geplande seizoenoperatie en maakt deel uit van de voortdurende netwerk. Op een luchtvaartmaatschappij laat meten Georgetown in Guyana te blijven bedienen. और भैया ये सब बात है सूरीनाम देश के जो आपको हम बताते हैं। हमारा समाचार धीरे धीरे खत्म आने के हुआ, एक दो समाचार और सुनाएंगे। टीम सूरीनाम क्लार फोर साउथ अमेरिकन स्पेलर इन अर्जेंटीना, अमेरिकन स्पेलर जो बा ऑडिजर 12 तारीख तो में 26 सितंबर 2020 में अर्जेंटीना में साथ साथ रामसरन वेटवेजिंग नोडक मिलिटेर ओवर यूनिट vergoeden, militaire lokke vergoeding chahi paweke aur batawe meer dan 1700 sikan hega door gratis school maaltijden Indonesië. Indonesië jo so so madmi khai baatat raha 1700 admi hua bimar hai nani, ab pata na hai Indonesië mein kaun khai aise dhar di se wo hai Medan Yafa mein Ben Suriname heeft kennis genomen en genoeg maar mismoed om bestuurscultuur te verandering. तो बहुत बहुत समाचार है जो आप लोग को मियाँ दिखाई दिए है कि कैसे कैसे तोरिया है। रेक्टर्स अमेरिका के वेकर चुरी लेते फरवेदे इन द साथ लिंसली क्लेंसी के बारे में तो एक बारे में बता रही। और तिबित में भैया जो ओवर स्ट्रोमिंग भैल हैगा, नेपाल में खस्ती खनात एनन देर तक भैया एनन देर तक और आदमी आयल ओक वर्द ऑफ 531 मेंशन फरमेस। तिबित चीनवा के देश में बा चीनीज मीडिया maakte eerder nog melding van 21 omgekopen slachtoffer, 1300 आदमी जो मर गए हैं, हजारों personen worden nog vermist हमारे जनता। तो ये सब बात है चीनवा देश के और श्रीलंका के कि उतना आदमी हुआ पे और मरल भैया। ब्रसल ट्रैक नॉक 500,000 यूरो आउट फॉर हेल्प फॉर नेपाल, 500,000 यूरो ब्रसल अब पठाएगा का बोले हैगा नेपाल में हुआ हेल्प करे के और जो उतना स्लख्त ऑफर हुआ भैले उतना आदमी हुआ मरल हैगा। हुतुस रखेरिंग रूपन तक ruim 80 dood
योगदान बे गफेक्टन तसन हुतु एंड रखेरिंग्स तुलन जाने अफ्रीका में को जगह हुतु है वेगो फलक है रखेरिंग लेडर से गेरिलिया इसे पे और लड़ी से ओतरा आदमी मरल हैगा या बतावे डेनमार्क का बोले भैया 2027 ना terugkeer centrum buiten Europa जाने आदमी लोन जो आवे मिग्रांटन बतावे गएगा verwacht करे 2027 में क्लार te zijn om migranten die niet in het land mogen blijven uit te zetten via een zogenaamd terugkeer centrum buiten Europese Unie. We hebben grote vooruitgang geboekt met de oprichting van een terugkeer centrum buiten de EU en zijn nu dichtbij dan ooit tevoren, zei minister van Immigratie en Integratie Bolle in de verklaring vanuit Denemarken. Verwachten we eind volgende jaar klaar te zijn om de eerste buitenlanders naar de partnerland te sturen. Of Bolle 4 andere landen, waaronder Nederland, hebben soortgelijke plannen ontmoet. Zijn ambtenaren, ambtgenoten uit Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Griekenland vrijdag in Kopenhagen. Kijk er maar mee. Seven jaiga batia, bhaiya aise batia hai hamare nani. To jaise jaise rahega aap log ko hum bas apna samachar batate hi rahenge.

दोस्तों, हम रेडियो फाहून के माध्यम से इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करते हैं। हमारे पता है न्यू टाउन स्ट्रैट नंबरो 25 और दनहाक शेहम। इस वक्त आपको इस प्रोग्राम को सुनाते हैं। दोस्तों, अगर आप रेडियो फाहून के प्रोग्राम सुनते हैं तो कई तरह के इस पे आपको मोख लिखाए थे, यानी कि देहाबी प्लस रेडियो के जरिए, यानी कि एटर पे भी आप सुन सकते अपने गाड़ी में 15.66 AM पर, और नहीं तो आप हमारा वेबसाइट पे जाइए और पूरा दुनिया में, पूरा विश्व में हमारा रेडियो फाहून के प्रोग्राम सुन सकते हैं। www.fm.nl।

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

मसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों, और ये है लता जी इसका गान इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात जो नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहां पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेख ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे। मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना दराई करे कि हम में भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था।
2: क्या
1: अगर मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों, अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुरानी गानाएं से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पर बहते हैं, और हम उस देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, जो अगर जो आप मुकेश के सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफ़ी जी के, रफ़ी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में क्या होता है, इशारों इशारों में तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना, तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रवि की आवाज में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 55 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नई खतीर 5/5 तक का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुरानी गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। मिशिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

0: ना।
1: तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानो राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों। और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा किरण फिल्म का नाम है। पतिता का ये फिल्म है दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में। इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमंत जी के आवाज़ में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना की ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे और नाम बहुत बड़ा है कितरूर कितरे को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे नाम बड़े हैं, बाकी दिल से बहुत खोटे हैं हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सीफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहती कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

और कमरिया करे लप्पा लोप और लोली पोप लागे हैं तू दोस्तों। और आज भी हम आप लोग को एक दो शेर भी आप लोग को सुनाएंगे। और कहते हैं जुदा भी हो के वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, जुदा भी होकर वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, ये और बात है कि देखने उसे जमाने हुआ, जमाने हुआ। और कहते हैं दोस्तों इश्क को सर का दर्द कहने वाला सुन, मोहब्बत का दर्द को, मोहब्बत को सर का दर्द कहने वाला सुन, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है। और अपने सर हम लेकर और क्या करेंगे, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमारी निगाहों से बचकर वो भला कहाँ जाएंगे। हमारे दोस्तों हमने उनके मोहल्ले में ही घर ले लिया है। तो हम चलते हैं कुछ बॉलीवुड रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और ये जो तेरी पायल की छन छन है, आशिकों की चाहत दिल के धड़कन है, आओ सुना जाए।

और ये जो तेरी पायलों के छनछन है आशिकों की चाहत के दिल की, और वो तो धड़कन है, और कहते हैं चिरागों में, चिरागों में दोस्तों, चिरागों में इतना नूर ना होता, अगर चिरागों में इतना नूर ना होता तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो कुछ एक दो कॉमेडियन शेरी भी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं बसाऊं मैं दम रखता हूँ, बजाओं में मैं दम रखता हूँ, दिल में छम रखता हूँ, और पता था कि SMS आएगी तेरा, इसलिए अरे बैठ के तेरा इंतजार करता हूँ, पता है कि आपके ऐप जरूर आएगा, इसलिए बैठ के इंतजार हम करता हूँ कि जानू मेरी जान, आओ मिलकर सुना जाए एक रिमिक्स सॉन्ग, और किशोर जी के सॉन्ग है, फिल्म का नाम है शान, जिसमें अमिताभ बच्चन परवीन बामी ने काम किया है, आओ सुना जाए जानू मेरी जान।

और जानू मेरी जान और मैं तेरा कुर्बान, कुछ रिमिक्स आज हम आप लोग को सुनाएंगे सुनाएंगे। कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं दोस्तों, कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा भैया, ही बतिया है। और कहते हैं चमका न करो जुगनू की तरह रात को ले जाऊंगा मुट्ठी में किसी रोज छुपा करे कि झलक दिखला जाए। आओ हमारा झलक आप लोग रेडियो के माध्यम से देखिए।

0: थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा
1: और झलक दिखला जा हमारे दोस्तों। और अगर झलक दिखलाएगे तो और क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कि आई फिर से गुजरा लम्हा याद, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाई उसने, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाए उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, हंसे तो थे उसके सामने, देख कर भी ना जाने क्यों फिर से नजरों को चुराया उसने। तो कुछ प्यार की और कुछ शायरी हो जाए दोस्तों, के कहते हैं चेहरे पे मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिशें उसके जो दिल से समझते हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे। और जाते हैं किशोर दादा के एक सॉन्ग, फिल्म के नाम है लवारिस।

जरूर अपने को जैसे तैसे में क्या होता है दोस्तों, अपने को जैसे तैसे और थोड़ी देत एंदात है कि कहते हैं ना पूछ किसी से ये उल्फत का, ना पूछ किसी से ये उल्फत का कि बड़ी लंबी कहानी है, मैं गैरों से नहीं हारा, मेरे किसी अपने की मेहरबानी है। हमारा दोस्तों चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिश है उसकी जो दिल से समझे हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे, तेरे चुनरिया।

प्रो दोस्तों, तेरे चुनरिया और तेरे चुनरिया में क्या हुआ? तेरे चुनरिया में एक दिल दिल को जख्म दे गई, एक दिल दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर जीने का कसम दे गया। लाखों फूलों में से

ये कैसा ख्वाब आंखों को दिखा गए हो तुम, और बचपन बदन पे और सितारे कौन लपेटा है, वो परमा श्री मोहम्मद रफी लपेटा है शामी कपूर से। आओ रिमिक्स सॉन्ग फन रेडियो फॉर होम दौड़ जॉनी नंबर 1।

और बदन भी सितारे लपेटे हुए और न जाने क्या क्या। और इसके बाद है दोस्तों, हम चलते हैं रैक यानी कि हम चलते हैं अगला सॉन्ग के अभी और दोस्तों, हम रिमिक्स सॉन्ग के ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं कि कहते हैं पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, अब मेरे मौत का भी वो फायदा उठाता है। पहले जिंदगी छीन लिए मुझसे, अब मेरी मौत का भी वो फायदा उठाता है। मेरी कब्र पे फूल, मेरे कब्र पे फूल चढ़ाने के बहाने वो किसी और से मिलने आता है। दैट इज वेयर हार्ट बेस्टर स्टार्ट्स, दैट इज हील हार्ट। दिल मेरा बहुत नाजुक है, जरा इसे संभाल कर रखना, तुमसे जुदा ना हो हम, बस इतनी दुआ करना। और कहते हैं, और क्या कहते हैं, एक सॉन्ग की ओर हम बढ़ा जाए कि ये कहते हैं कहो ना प्यार है।

प्यार है, कहो ना प्यार है, ओनली रिमेक सॉन्ग कहते हैं, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, अपनी आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, अपने आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, वो चाहे लाख नफरत करे तुमसे पर तुम अपना प्यार कभी उसके लिए कम नहीं करना. दिस इज अ टिप फॉर माय बेस्ट लिसनर्स. एक नोग रिमिक्स ड्राए मेंसे, एक नोग रिमिक्स ड्राए. तो आप लोग को हम सुनाते हैं रिमिक्स सॉन्ग, वो है डम डम डम मारो डम. दोस्तों

और दोस्तों, डम डम डम डम, और क्या था, डम डम ढिगा ढिगा, डम मारो दम था। हाँ, कहते हैं प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, अपनी मोहब्बत का जिगर आज सारे आम कर दो, और नहीं करते अगर प्यार तो इनकार कर दो, ये लो मेरा मासूम दिल इसके टुटके हजार कर दो, ये लो मेरे मासूम दिल इसको टोर कर हजार कर दो, और मेरा प्यार की पहचान तो ही तू ही तो है, मेरा मेरी मेरा प्यार की पहचान तू ही तो है, मेरे जीने का अमान तू ही तो है, कैसे कैसे बजाएं करे, कैसे बजान करे अलार्म इस दिल को, मेरा आशिक मेरी जान तू, मेरी आशिक मेरी जान तू ही तो है। तो आपको कुछ शायरी हम आप लोग को यहाँ से सुनाए हैं, और एक ओल्ड गोल्ड सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। दोस्तों, ये एक ओल्ड सॉन्ग है, फिल्म का नाम है दो उस्ताद, आओ मिलकर सुना जाए।

दोस्तों बारिश बन जाना कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहां से हम और आपके कानों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहोन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 मेगाहर्ट्ज पर और नहीं कनाल 8 पर, और देहाबी प्लस रेडियो पे हमारा प्रोग्राम आप सुन सकते हैं 24 घंटा। नहीं हमारा वेबसाइट जो है पूरा विश्व में पूरा दुनिया पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं सुन सकते हैं, और वो है www.fahon.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरा, तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दैट वाज वेल मो ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती, बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं, और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है, दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: और कृष्णामूर्ति, कविता कृष्णामूर्ति, शान का गया हुआ गीत है, छाया है, और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों, कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है, और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है, कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम, कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो, और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों, कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है, और खास करके विंटर के महीना में, कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों, उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए,
1: बचाने तो मुझे क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना,
2: ट्रेन 6 घंटे में।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिन नौ यानी कि जुबिन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी। दोस्तों जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपकी शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल है दोस्तों बहुत लंबा होता है कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव, मैं प्रेम की दीवाना हूँ, एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

Oh, Sanjana, I love you. Sanjana, I love you. हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और KS चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता। तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है और सिद्धरात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, निहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

शनिवार अनाउंसर डीजे राजेश, आप सबको हार्दिक से स्वागत है। राम राम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हरिओम, हरि बोल। और आज भी मेरा मौका है आप सबके मस्ती और मनोरंजन पहुंचाने के लिए, जहां तक मेरा आवाज पहुंचते हैं इस वक्त, यानी कि दुनिया भर में। आप चून हो जाइए इंटरनेट रेडियो पर फाहोन एफएम पेंटेनल, या तो डीएबी प्लस रेडियो पर, यानी कि आजकल के रेडियो वही हैं। हाँ, शुभ रात्रि कहते हुए प्रोग्राम को यहां से जारी करेंगे और जुड़ जाइए, मिल जाइए मेरे साथ।

और इसे मेरा दीवानगी आप सबके नाम पर चला है, ढूंढे मेरी दीवाना ऐसे बात है। आप सबको एक बार और हार्दिक से स्वागत है हमारा हिस्सा प्रोग्राम में, और ऐसे ऐसे गाने चलने वाला है, यानी कि सबसे मस्त भरी गाने, द लेटेस्ट ऑफ द लेटेस्ट, कुछ हंगामा सॉन्ग्स एट दिस वीकेंड बेस्ट मेंस। Happy weekend to you all. Happy Saturday.

कुछ गड़बड़ मिक्स आप सभी के वास्ते एनथिस वीकेंड बेस्ट मैन से दिस माकर ब्रेक माकर हिंग मिस ब्रेक फन विद डेजी बॉय

सॉन्ग बाय नेहा कक्कर और ध्वानी, और ऐसे ही मिक्स और रीमिक्स का प्रोग्राम चलता है। आप सबको शुभ वीकेंड कहते हुए मस्ती और मनोरंजन प्राप्त होते हैं आपको जरूर से।

जरूर से आपने मनोरंजन प्राप्त किए होंगे। दिस सोका चटनी स्टाइल एंड वहां वे बैक एंड बैक टू टाइम बैक इन टाइम मुझे कहना चाहिए। डोंट स्टॉप टुडे एंड गोल्डन ऑल दी इन सोका चटनी।

शनिवार 12 तारीख नवंबर है आज। आकाशवाणी के दोस्तों 8 मिनट तय निकल चुके हैं और ये भी 7 बज करके। मैं हूं आपके डीजे अनाउंसर डीजे राजेश। आप सबको हार्दिक से स्वागत है। राम राम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हरिओम, हरिबोल। और आज भी मेरा मौका है आप सबके मस्ती और मनोरंजन पहुंचाने के लिए। जहां तक मेरा आवाज पहुंचते है इस वक्त, यानी कि दुनिया भर में आप चुन हो जाइए इंटरनेट रेडियो पर फाहोन एफएम पेंटेनल, या तो डीएबी प्लस रेडियो पर, यानी कि आजकल के रेडियो वही हैं। आप सबको एक शुभ रात्रि। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आपको एक शुभ दिन अब तक हुए हैं। और हाँ, शुभ रात्रि कहते हुए हम प्रोग्राम को यहाँ से जारी करेंगे और ये भी 10 बजे रात्रि तक। तो जुड़ जाइए, मिल जाइए मेरे साथ।

और इसे मेरा दीवानगी आप सबके नाम पर चला है, ढूंढे मेरी दीवाना, ऐसे बात है। आप सबको एक बार और हार्दिक से स्वागत है हमारा हिस्सा प्रोग्राम में, और ऐसे ऐसे गाने चलने वाला है, यानी कि सबसे मस्त भरी गाने, द लेटेस्ट ऑफ द लेटेस्ट, कुछ हंगामा सॉन्ग्स एट दिस वीकेंड बेस्ट मेंस। Happy weekend to you all. Happy Saturday.

कुछ गड़बर मिक्स आप सभी के वास्ते दे देसी बॉयज इन द क्लब एंड इट इज वीकेंड बेस्ट मेंसे दिस माक एर गब्रुक माक एर गिंग मिसब्रुक फन विद द देसी बॉयज मेक नॉइस क्योंकि बहुत नॉइस करेंगे तो

सॉन्ग बाय नेहा कक्कर और ध्वानी, और ऐसे ही मिक्स और रीमिक्स का प्रोग्राम चलता है। आप सबको शुभ वीकेंड कहते हुए मस्ती और मनोरंजन प्राप्त होते हैं आपको जरूर से।

0: Going live.
1: Put your hands in the air.
2: Your DJ Raj is in the house with a weekend program. Happy weekend to you all. और ऐसे चलता है मिक्सेस और रीमिक्सेस द बॉलीवुड हिट्स.

देसी मिक्सेस इंटरनेशनल मिक्सेस आप सभी के वास्ते ऐसे चलते हैं इस वक्त। हाँ, जैसे देसी कहते हैं, हाँ तो ऐसे जुड़ जाते हैं, कोई और जो नखमा निकल जाते हैं कहीं और भी, और ऐसे ऐसे गाने लेकर मैं उपस्थित हूँ आप सबके सेवा करने में।

0: दो सैटरडे नाइट फीवर आप सभी के वास्ते इस वक्त चल रहा है और ऐसे ऐसे गाने लेकर हम आपके नाम पर पेश करते हैं। पगला और पगली की कहानी आपने सुने हैं तो मैं सुना देता हूँ, और पगला और पगली के बीच में क्या होते हैं।
1: गलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे, होए होए,

0: Et que ça y conseille.
1: Yes.
0: और ऐसे मिक्स और रीमिक्स में आपने सुने हैं, ऐसे ये जमाना है, ऐसे ऐसे गाने आजकल के जमाना में चलता है। और मैं पूरा उम्मीद और आशा के साथ कह सकता हूँ जिनके दिल लगी तो वो सही।

0: AG the Gangster.
1: गैंगस्टर स्टाइल भी आपने सुने हैं और मुरमुर के ना देख वखान देती हो चुकी आप सुनाते बेस्ट मैन से सो डायरेक्टर।

0: is VAHON Hindustani Radio.
1: Nupa Impact Group Kleinhandel Dinkel Nummer 56 Den Haag mein. सभी तरोपिस समान रोजाना आपको यहाँ पर ताजा दी जा रहे हैं भाता भिंडी तरोई अमसोई सुप्रोपो तैरबला कौस बांध अनेक तरह की ड्रिंक्स आपको यहाँ पर मिलते हैं फर्नांडिस के साथ में मसाला ब्लिक्स वारन कासरीपो चावल और दाल अवल और बेहतर पता है जहाँ पर रोजाना तमाम ताजा सामान आपको मिलते हैं निहायत सस्ते भाव पर हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए तार का नंबर आप नोट कीजिए 0703726762 पर आप बातचीत करें नूपा इंपैक्ट रोटर क्लाइन हैंडल डिंकल नंबर 56 देन हाग में
2: Nupa Impex, Surinaamse markt in Den Haag. U kunt bij ons terecht voor Fayapatu producten, Salto Mix, kant-en-klare chutney, bonensoorten, ketchup marinades, nasi kruiden, pomtaier en nog veel meer. Kijk op onze website surinaamsetoko.nl. Surinaamse markt in Den Haag.
3: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet Wakalet Kakam Karta Hei Jabi Aku Ebadiha Wakil Kir Zeruri Pargaya Hei.
4: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden Register van de Orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning.

अरे से आकाशवाणी के दोस्तों, आप सबको एक बार और हार्दिक से स्वागत है प्रोग्राम में। आज रात्रि के समय में यानी कि वीकेंड है, तो सिर्फ मस्त भरी गाने आप सभी के लिए मैंने चुनकर रखे हैं, चुनकर लाए हैं। यही बातें कह करके मैं तुरंत चलता हूँ आप ही के वीकेंड, एक खूबसूरत सा वीकेंड होने के लिए लाते हैं द वेस्ट इंडीज, यहां से कुछ बदलाव लाते हैं। एलक यूर इफ इट्स अंडर्स योर डायनामिक रेडियो स्टेशन फाहोन एंड वहां लुस्टरनार दिले नादान। En u weet het, beste mensen, Dilena Dan from Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago, waarom zeggen we Tobago? Ja, dat is, het is maar eenmaal zo geworden, Trinidad and Tobago. Mijn wens is ook een keertje daar naartoe te gaan. Om al deze artiesten te ontmoeten. Misschien. Want ze zijn high society. Is goed, beste mensen. Wie niet probeert, wie niet waagt, wie het nooit wint, hè?

जरूर से आपने मनोरंजन प्राप्त किए होंगे दिस सोका चटनी स्टाइल एन वहां वे बैक एन बैक टू टाइम बैक इन टाइम मुझे कहना चाहिए डोंट स्टॉप टुडे एंड गोल्डन ऑल दी इन सोका चटनी

अंठे हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। ले तो निकलिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 20 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फनफुनके हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 8 फाहून हिंदुस्तानी रात।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं आज फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ प्रोग्राम लेकर स्वप्न विज्ञान यानी सपनों की दुनिया।

वालों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कुछ पूर्वभाषी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न यानी कई ऐसे लोग हुए हैं जिनको सपने में पहले ही पता चल गया था कि उनके आने वाला समय कैसा है या उनके जीवन में कौन सी घटना घटेगी। आभूषणों पर अक्षरों का अर्थ। एक महत्वपूर्ण स्वप्न का वर्णन आयुमान पर्सनैलिटी नामक पुस्तक के 80-85 पृष्ठ मिलते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिल्ट प्रेकेट आगटे एक बहुत प्राचीन आभूषण पर खुदे अक्षरों का अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा था। वह बेबीलोनिया के किसी सम्राट से संबंधित 3000 वर्ष से अधिक पुराना था, जिसके दो टुकड़े थे। एक दिन आधी रात के स्वप्न में एक पुजारी ने बताया कि दोनों टुकड़े एक ही गोल वस्तु के तोड़कर बनाए गए हैं। दूसरे दिन हिल प्रेकेट ने उनको जोड़कर देखा तो स्पष्ट पड़ गया भगवान नीलिम्ब को सम्राट कुरी गालजू की भेंट।

सुनने वालों, ऐसा ही एक संदेश मैं आपके लिए और रखने जा रही हूँ, सही वसीयत की सूचना। अमेरिका में सन 1937 में प्रकाशित नामक पुस्तक में चैफिन के एक धनी किसान ने 1905 में एक उत्तराधिकार पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी समस्त जायदाद तीसरे बेटे के नाम लिख दी, और 1919 में एक दूसरे उत्तराधिकार पत्र में जायदाद चारों बेटों में बराबर बांट कर लिख दी। बाइबल में रख कर बिना किसी को बताए भूल गया। 7 सितंबर 1921 को चैफिन का देहांत हो गया और पहली वसीयत के अनुसार जायदाद तीसरे बेटे को मिल गई। जून 1925 में चैफिन की आत्मा ने दूसरे बेटे को स्वप्न में बताया कि बाद वाली वसीयत ओवरकोट में रखी बाइबल के भीतर रखी है। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जायदाद चारों भाइयों में बांट दी गई। सुनने वालों, देखो अभी आपने सुना कि एक परिवार के स्वप्न, तो कि उनके पिताजी ने कैसे वसीयत बना के रख दी एक बेटे के लिए, फिर दूसरी वसीयत बनाई दूसरे तीन बेटों के लिए, लेकिन वो दूसरा उनको कागज़ नहीं मिला तो पहली वसीयत के मुताबिक पहले बेटे को ये सारी जायदाद मिलने वाली थी। लेकिन जब दूसरे बेटे को स्वप्न आया कि नहीं, एक और वसीयत बना के उन्होंने अपने यास में रखी हुई है, तो वो बेटे ने वो कागज़ निकाला, अदालत में पेश किया, फिर एक भाई के बजाय चारों भाइयों को बराबर जायदाद मिली।

सुनने वालों, आप सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो, जो आप सबके लिए अब नए नए प्रोग्राम लेकर आता है। अब हम आगे चलते हैं। नेत्रों का फड़कना यानी आँखों का फड़कना। दाएं नेत्र की ऊपरी पलक, दाएं नेत्र की निचली पलक। धन यश प्राप्ति चिंता का विषय। बाएं नेत्र की ऊपरी पलक, बाएं नेत्र की निचली पलक। शत्रु से संघर्ष, कहा सुनी हो जाना, नीचा देखना। दाएं नेत्र का दायां कोना, कहा सुनी में नीचा देखना। बाएं नेत्र का नाक वाला, शुभ संकेत पुत्र प्राप्ति, शिष्य या कम आयु के प्रियजन से भेंट। यदि दाई आँख फड़कती है तो शुभ, परंतु स्त्री के लिए अशुभ। यदि बाई आँख फड़कती है अशुभ है, परंतु स्त्री के लिए शुभ है। दोनों एक साथ फड़कती हैं तो स्त्री को भय चिंता शोक हो जाता है। बायां नेत्र नीचे को शुभ होता है, बायां नेत्र ऊपर को चिंता भय शोक लड़ाई वाला होता है। सुनने वालों, अभी आप लोगों ने सुना नेत्रों का फड़कना, यानी जब हमारी आंखें फड़कती हैं तो उसका क्या परिणाम होता है। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है।

सुनने वालों, सोपन विज्ञान बताता है कि हमारे शरीर में से सारे अंग ही फड़क सकते हैं, चाहे आँख हो, चाहे हमारा तालुआ हो, चाहे कंठ हो, चाहे कंधे हो, अब मूछें भी हो सकती हैं। सुनने वालों, समूची मूछ, शुभ, धन, धान्य, दूध, दही, सवारी, ऐश्वर्य। दायां भाग शुभ, विजय, बायां भाग कहा सुनी, झगड़ा। सुनने वालों, आप सबने सुना कि मूछें फड़कने से भी लाभ हो सकता है और परेशानी भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है। ये संदेश जो आप सबने सुना, ये स्वप्न विज्ञान से निकाला गया है। सुनने वालों,

तालू का फड़कना, कंठी की कंठी, आर्थिक दृष्टि से शुभ भोगों की प्राप्ति, तालू का दायां भाग रोग से परेशानी, तालू का बायां भाग किसी अपराध में बंधी, दाढ़ी फड़के अपशकुन लड़ाई मुकदमे में हार, दाढ़ी का दायां भाग सुख की प्राप्ति, दाढ़ी का बायां भाग अधिक अच्छे धन यश दोनों मिले।

सुनने वालों, हमारा अगला संदेश है कंठ का फड़कना। पुरुष का इच्छित भोजन मिले, स्त्री का कंठहार आदि मिले, कंठ का बायां भाग अच्छी उपलब्धि, कंठ का बायां निचला भाग अल्प मूल्य के आभूषण मिले, कंठ का ऊपरी भाग स्वर्ण माल मिलने की संभावना, कंठ का निचला भाग शस्त्र पीड़ा। सुनने वालों, ये संदेश रखा गया कंठ के बारे में जो हमने निकाला स्वपन विज्ञान से। सुनने वालों, आप सबको तो मालूम है कंठ किसे कहते हैं। कंठ कहते हैं गले को, और कहते नहीं कि गले के लिए हार भी चाहिए, कंठ हार।

सुनने वालों, अब मैं आपको बताऊंगी कि स्वप्न में देखे गए रंगों का फल, कि अगर हमें सपने आते हैं उसमें हमें रंग दिखाई देते हैं तो उन सपनों का क्या मतलब है। लाल रंग, अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। हरा रंग, धन कमाने की योग्यता। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन। सफ़ेद रंग, अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना। काला रंग, दुर्भाग्य। सुनने वालों, ये है स्वप्न में रंगों के बारे में स्वप्न, कि जब हमें सपने आए उसमें रंग दिखाई दे तो उन सब का क्या मतलब होता है। सुनने वालों, आप सबने सुना कि सपन में देखे गए रंगों का क्या महत्व होता है और उनका क्या मतलब होता है। जैसे कि लाल रंग दिखाई दे तो उसमें अच्छा स्वास्थ्य होगा और आयु हमारी बढ़ेगी। और जैसे कि आपने सुना कि हरे रंग का क्या मतलब होता है, हरा रंग धन कमाने की योग्यता, कि अगर हरा रंग दिखाई देगा सपने में तो हमें धन कमाने की योग्यता प्राप्त होगी। नीला रंग, सुखी पारिवारिक जीवन, कि अगर हमें सपने में नीला रंग दिखाई दे तो उससे हमारा परिवार सुखी होगा। सफ़ेद रंग दिखाई दे तो अपने समाज में प्रतिष्ठित स्थान की प्राप्ति, कि हम समाज में एक अच्छा सा स्थान प्राप्त करेंगे। नारंगी रंग, अपना निजी मकान होना, कि हमें अपना मकान हो जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। पीला रंग, दूसरों की ईर्ष्या का शिकार होना। यदि सपने में हम लोगों को पीला रंग दिखाई दे तो उसका मतलब है कि हम दूसरों की नफरत के शिकार बनेंगे, दूसरे हमसे जलेंगे। भूरा रंग, बेईमानी का दोष लगाना, कि अगर हमें सपने में भूरा रंग यानी ब्राउन रंग दिखाई दे तो दूसरे लोग हम पे दोष लगाएंगे कि तुमने हमसे बेईमानी की है। काला रंग, दुर्भाग्य, वो तो आप सब जानते हैं कि काला रंग हमेशा दुर्भाग्य का ही होता है।

स्वप्न में देखी गई धातुओं का फल, सोना, अनेक कठिनाइयां, रोग, धन संपत्ति की हानि, चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात, तांबा, यात्रा में दुर्घटना, लोहा, अपने परिश्रम। सुनने वालों, सपने में जब हमें धातुएं दिखाई दें, यानी कि सोना चांदी जिससे बनता है, तो उसके क्या क्या परिणाम होता है? सुनने वालों, जैसे कि धातुओं से क्या क्या परिणाम होता है, जैसे सोना खाउट हमें अगर दिखाई दे सपने में, तो उससे हमें अनेक कठिनाइयाँ होती हैं, रोग होता है, धन संपत्ति की हानि। हमारी नानी और दादी भी कहते होते थे कि सोना मिलना भी मुश्किल है और खोना भी मुश्किल है। अगर मिल जाए तब भी उसका अच्छा परिणाम नहीं होता, अगर खो जाए उसका भी अच्छा परिणाम नहीं होता। चांदी, प्रेम में निराशा तथा विश्वासघात। अगर सपने में हमें चांदी दिखाई दे तो उससे हमें प्रेम में निराशा होती है और कोई हमारे साथ विश्वासघात करता है। सुनने वालों, तांबा, अगर तांबा हमें सपने में दिखाई दे तो यात्रा में दुर्घटना हो सकती है। सुनने वालों, अगर सपने में हमें धातुओं में लोहा दिखाई दे तो उसका मतलब है अपने परिश्रम की, हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम यानी मेहनत करनी पड़ेगी। सुनने वालों,

सुनने वालों, बुरे सपनों से बचाव, यानी कि अगर हमें बुरे सपने आए तो उसका हम बचाव कैसे कर सकते हैं। सोते समय व्यक्ति का हाथ उसके सीने पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाथ से निकलने वाली विद्युत से हृदय की स्वाभाविक क्रिया अधिक होती है। सोते समय विष्णु, कृष्ण, माधव, महामुनि, कपिल, आस्तिक का स्मरण कर लें। सोते समय व्यक्ति यह शाबर मंत्र 3 बार बोलकर बाएं घुटने पर 3 बार हाथ मारकर शिव का स्मरण करके सो जाए। शिव की कूची, बजर का ताला, ई देही का बजरंग रखवाला, शिव गौरख, शिव गौरख, शिव गौरख। सोने से पूर्व स्वस्थ प्रसन्नचित हो तथा सोते समय उत्तर की तरफ सिर नहीं करना चाहिए।

सपने में अंक देखना, यानी सुनने वालों, अगर हमें सपने में साइफर्स दिखाई दे तो उसका क्या मतलब होता है? स्वप्न में 8 का अंक देखना दुर्भाग्य सूचक होता है। हमारा निजी विचार है कि शुक्र के तुला 7 या वृषभ 2 लगन वालों को 8 शनि का अंक दुर्भाग्य सूचक नहीं होगा। 18 का मंगल अंक देखना जातक को विपत्ति में डाल सकता है, परंतु मेष वृश्चिक लगन वालों को कोई हानि नहीं, उसको कोई हानि नहीं पहुंचती। 11 का अंक देखना सौभाग्य सूचक है। सुनने वालों, अब आपको अगर सपने आए और उसमें आपको साइफर्स दिखाई दें

सुनने वालों, अगर आप सपनों में खुद को अस्वस्थ यानी रोगी देखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? अपने सिवाय किसी अन्य को अस्वस्थ देखने से कष्ट विपत्ति होती है, रोगी भी होता है, परंतु स्वयं को यानी अपने को अस्वस्थ देखने से प्रसन्नता, सुख शांति मिलती है, परिवार के साथ मिलाप बढ़ता है।

विभिन्न देशों में छींक संबंधी मनोरंजक मान्यताएं, यानी सुनने वालों, अलग अलग देशों में कि छींक आने पर कैसे लोग उनका उनके बारे में सोचते हैं। ब्रिटिश न्यू गियाना के क्योटा जाति के लोग शयन कक्ष यानी स्लाब कमर में छींक को इस बात का सूचक मानते हैं कि आत्मा इस शरीर में वापस आ गई है। गुल्लू जाति के लोग छींक आने के बाद ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। टोंगा जाति के लोग यात्रा आरंभ के समय छींक आने को अपशकुन मानते हैं। जमैका के नीग्रो जाति के लोग मानते हैं कि यदि नाक में खुजली का अनुभव हो तो लोग जातक की बुराई सोच रहे हैं। एस्टोनिया के निवासी यह मानते हैं कि यदि दो गर्भवती स्त्रियां यानी दो स्वांगर औरतें एक साथ छींकें तो वह कन्या को जन्म देंगी, और यदि दो पतियों को एक साथ छींक आए तो लड़कों का जन्म होगा। जर्मनी में ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि जूता पहनते समय छींक आ जाए तो उसका अत्यंत शुभ लाभ मिलता है। पर्शिया के लोग छींक आने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शैतान से उनकी रक्षा की जाए। यूनानी लोग छींक को देवी कृपा का संकेत मानते हैं।

सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं तिथियों के अनुसार स्वपन फल, यानी कि जो डेट है, तारीख है, 1, 2, 3 महीने।

बचपन 2 माह से 2 वर्ष में फल देता है। 6, 7, 8, 9, 10 तारीख का स्वपन शीघ्र सत्य फल देता है। 11, 12 तारीख का स्वपन विलंब से फल देता है। 13, 14 का स्वपन फल मिथ्या देता है। पूर्णिमा का स्वपन फल अवश्य देता है। कृष्ण पक्ष की 1 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 2 तारीख का स्वपन फल सार्थक परंतु विलंब से, 3, 4 तारीख का स्वपन फल मिथ्या, 5, 6 तारीख का स्वपन फल 2 माह से 3 वर्ष में, 7 तारीख का स्वपन फल शीघ्र मिलता है, 8, 9 का स्वपन फल विपरीत देता है, 10, 11, 12, 13 तारीख का स्वपन फल मिथ्या होता है, 14 तारीख का स्वपन फल सत्य तथा शीघ्र होता है, अमावस्या का स्वपन फल मिथ्या देता है। सुनने वालों, ये सब थे कि तिथियों के अनुसार अगर हमें सपना आए तो उसका क्या फल मिलता है।

सुनने वालों, हम कुछ बातों को अच्छा भी मानते हैं, शुभ मानते हैं, ऐसे ही जैसे हथेली का शगुन। यदि प्रातःकाल जागने पर हाथों की हथेलियों पर दृष्टि पड़ जाए तथा हाथ में कलश, ध्वजा और छत्र हो, तो समझो कि 7 माह तक यानी 7 महीने तक धन का लाभ होता है तथा भावी उन्नति भी होती है यानी तरक्की भी होती है। सुनने वालों,

यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रख लेते हैं तो आप दुख के 100 दिनों से बच सकते हैं। मेरी ओर से सभी सुनने वालों को नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा।

0: क्रटुंडा महाकाया सूर्यकोठी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा हूँ, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी ना किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसीलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूं और हम सब फिर इकट्ठे हो चुके हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश जो हम सब लेकर यहां उपस्थित हुए हैं। संदेश क्या रहेगा आज वो अभी हम सब सुनेंगे राजेंद्र जी से, और इस समय जो शांता जी भी कुछ तैयार हो चुके हैं, तो शांता जी आप पहले कुछ सुनावे तो राजेंद्र जी की ओर हम सब बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आज से बेहतर कुछ नहीं, आज से बेहतर कुछ नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। मेरी आवाज़ के प्यार सुनने स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम आज के ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में। तो बढ़ चलते हैं सुनने के लिए राजेंद्र जी की ओर।
2: फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा आदर और प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि आपने अभी शांता जी से सुना कि आज आज और अभी की जो बात करी है वो बहुत ही अच्छी लगी, सबको लगी होगी। और आज का जो प्रोग्राम है दो प्रोग्राम, एक तो बिल्व पत्र का है, बेल पत्र जो भगवान शंकर को बहुत ही प्रसन्न हैं और जिनसे वो बहुत खुश होते हैं, और दूसरा है द्वादश ज्योतिर्लिंग। तो हम पूर्ण रूप से आज द्वादश ज्योतिर्लिंग और बिल्व पत्र की बात सुनेंगे। सुनने वाले श्रोताओं इसको आप बड़े अच्छे से सुनेंगे और मनन करेंगे और अपने जीवन में भी उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद
0: राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कह दिए है। तो अगर जो ज्यादा ना कहूं
2: जी,
0: तो हमारे सभी सुनने वालों के लिए हर सप्ताह की तरह आप एक सुंदर सा गीत और रखते हैं, तो वो सुंदर गीत की ओर हम सब बढ़ते हैं जिनका मन उदास है उनके लिए, ताकि वो इस कार्यक्रम को और खूब भावना से सुन सके। तो गीत का बोल आप ही कह दीजिए राजेंद्र।
2: उदासी मन काहे को,
0: उदासी मन काहे को डरे,
2: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। अभी राम जी बेड़ा पार करेंगे, इसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे।

0: इंदर जी सुंदर गीत जो आपने चलाए और हर सप्ताह की तरह सभी सुनने वालों के लिए, और ये तो हमारे बात है कि कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है और आज का विषय जैसे कि आपने कह चुके हैं कि 8 दिनों जो कि है जिसे बेलपत्र ना तोड़ा जाए, तो ये संदेश अभी तो हम सबको प्राप्त होने वाले है, पर ये बताइए कि आज के दिन आपके कैसे बीते।
1: हाँ, आज का दिन बहुत अच्छा बीता है, मेरा हर दिन अच्छा ही रहता है, और जब अम्मा मेरा दिन अच्छा रहेगा तो दूसरे का भी अच्छा ही रहना चाहिए। तो आप बताइए कि शांता जी आपका आज का दिन कैसा बीता?
2: मेरे भी बहुत अच्छे से बीते और मैं भी बहुत खुश हूँ, और रहा देख रही थी पर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो में उपस्थित हो हम अपने साथी और समाज को सेवा करने के लिए।
0: पर शांता जी,
2: हाँ जी,
0: कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले जरूर कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं देख रहा था आप स्टूडियो की ओर बढ़ रहे थे तो गुलदस्ता लेकर आए हैं और मैं देख रहा हूँ कुछ मिठाई लेकर आए, कहीं आज आपका हैप्पी बर्थडे तो नहीं है?
2: हैप्पी बर्थडे वैसे तो जब सुबह आँख खुल जाती तो हैप्पी बर्थडे हो जाती है,
0: ऐसा
2: क्योंकि हर दिन मिलता है या आँख खुल जाता है, जाना हर दिन एक मौका मिल गया है कुछ अच्छा करने के लिए। और ये गुलदस्ता जो है तो मेरी आदत है, जहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाओ,
0: जहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाओ,
2: ये मेरी आदत है ना।
0: आपके आने से और जहाँ पर लेकर फूल लोग जाते तो वहाँ का
2: माहौल बदल
0: जाता है ना?
2: हमने देखे यहाँ पे आए तो जो वहाँ व्यक्ति बैठे थे वो सभी खिल उठे। हाँ, सभी के बत्तीसी हमने देख ली।
0: बोले तो सभी को बत्तीसी
2: हमने देख ली।
0: सुनने वालों, अभी हम सब कार्यक्रम जो आगे बढ़ाने वाले, पर शांता जी आपने तो मुझसे नहीं पूछा कि मेरा कैसा दिन हुआ।
2: आपने मौका नहीं दी तो हम क्या करें, तो मैं यही पूछ लेती हूँ संजय जी आप।
0: दिन ठीक था, वैसे तो बुरा नहीं था, पर आज काम ज्यादा था ना, समय का कमताई और काम का दबाव।
2: अच्छा,
0: ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश और हमारे सभी सुनने वालों के लिए, हम सब कुछ संदेश लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, और कहा जाता है कि जैसे शांता जी सोचते कि हमें भी और सेवा के ओर बढ़ना है, तो छोटा रूप में ये भी सेवा समझो, और हमें भी अच्छा लगता है कि हम सब साथ में मिल करके और कुछ करते हैं। दोस्तों, जैसे कि राजेंद्र जी ने सुना ही चुके हैं कि आज का अविषय, राजेंद्र जी पहला वाला कौन सा आप सुनाने वाले हैं?
1: हाँ, आज का जो विषय है पहले वाला, 8 दिनों में बिलपत्र तोड़ना मानते हैं अशुभ, शिव जी कहते हैं।
0: तो शिव जी का एक गाना क्यों नहीं चला देते?
1: हाँ, सबसे पहले शिव जी का एक गाना
0: चला देते हैं राजेंद्र जी।
1: जी जरूर।

0: कोटि नमन दिगंबरा, अभी आपने पंचाक्षर शिव स्त्रोतम सुना, बहुत ही अच्छा लगा होगा। आगे बढ़ते हैं आज का जो कार्यक्रम है उसकी तरफ, कि आज का जो मुख्य उद्देश्य है बेलपत्र, जिसको कहते हैं कि बेलपत्र में तीन पत्ते होते हैं और कभी कभी पांच पत्ता भी देखने को, चार पत्ता भी मिलता है, बहुत कम, लेकिन एक पेड़ में हो सकता है कोई एक आध हो, लेकिन ऐसा हमने देखा है भारत में भी। आगे बढ़ते हैं, बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार को तथा दोपहर के बाद नहीं तोड़ना चाहिए।
1: ये तोड़ना नहीं चाहिए?
0: कब नहीं तोड़ना चाहिए?
1: किस दिन में, एक बार फिर बोल दो।
0: चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार को तथा दोपहर के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। सुबह सुबह तोड़ सकेला?
1: सुबह सुबह तोड़ सकते हैं, पर शाम में नहीं,
0: नहीं
1: दोपहर में नहीं,
0: दोपहर के बाद नहीं,
1: दोपहर के बाद नहीं, यानी कि रात्रि में नहीं तोड़ना चाहिए।
0: हाँ, दोपहर मतलब 12 बजे के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। फिर
2: एक छोटी सी सवाल है
0: जी,
2: आपने कहा चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, आप कैसे जानोगे कि कब चतुर्थी है, अष्टमी है, नवमी है, एक इसका गिनती कैसे करोगे?
0: इनका गिनती बहुत ही सरल है, जब चंद्रमा,
2: हाँ,
0: चंद्रमा के अनुसार आपको पता चल जाता है। संजय जी आप बताइए कैसे इसका पता चलता है?
1: अमावस्या होता है जब चंद्रमा एकदम बिल्कुल अंधेरा हो जाता है,
0: मतलब एकदम
1: एकदम काला,
0: जीरो जीरो
1: जीरो, और नियोमान बोले ना,
2: हाँ, पूर्णिमा,
1: पूर्णिमा कहते हैं जब पूरा
0: पूरा हो जाए चंद्रमा,
1: हाँ पूरा चंद्रमा हो जाता है, ऐसा होता है। और उसी दिन से जहिया पूर्णिमा होता है उसी दिन से गिना जाता है, तो लगभग 14 रात्रि में वो फिर दोबारा जो पूर्णिमा से अमावस्या हो जाता है। कृष्ण पक्ष लगते तो एकदम अंधेरा हो जाता है और शुक्ल पक्ष होते हैं तो उजाला हो जाता है,
0: पूर्ण चंद्रमा।
1: हाँ, तो ये कोई खास बात नहीं शांता जी, ये तो घर घर को पता है, और आप तो भी ऐसे ही अपना कार्य करते होंगे क्योंकि एकादशी व्रत तो आप रखते हैं।
2: ना, इसलिए मैं पूछी क्योंकि आप जानते हो, मैं जानती हूँ, राजेंद्र जी जानते हैं, ऐसे भी कई श्रोतागो हैं
1: आपके चलते, कितने लोगों भी इस बात को जान जाएंगे।
2: नहीं तो
0: हाँ, आगे बढ़ते हैं। इन तिथियों को बेलपत्र तोड़ने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं, इसलिए कभी भी इन तिथियों को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रसन्न होने व मनोरथ पूर्ण करने वाला माना गया है, लेकिन बिना बेलपत्र चढ़ाए शिव की पूजा करना भी व्यर्थ है, क्योंकि शिव जिस चीज़ से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं वह बेलपत्र ही है।
1: है कि शिव जी का बेलपत्र इतना प्रसन्न है, त्रिगुणम त्रिनेत्रम त्रिजन्म पापहरणम बेलपत्राणी समर्पयामी, ना
0: जी।
1: हाँ, तो हम इस समय हमारे टेलीफोन जो हमारे भाई जी टेलीफोन किए हैं, थोड़ा से अगोल लेना, अभी हम लोग आपसे बात करेंगे। पर ये बात हो जाता है कि शिव जी के बेलपत्र सबसे प्रिय,
0: सबसे प्रिय होते हैं,
1: तो यहाँ हॉलैंड में होता है शांता?
0: हॉलैंड में बेलपत्र मैंने नहीं देखा है कभी,
2: उसका पौधा हमने देखी है।
1: हाँ, पौधा हो जाता है कहीं काल के, पर बड़ा नहीं होते,
2: अब पता नहीं हमने दिखी नहीं।
0: हाँ, मुझे लगता है कि हॉलैंड में अगर बोएंगे बेलपत्र तो हो सकता है, लेकिन
1: नहीं, लोग कितने कोशिश किए राजेंद्र जी, पर यहाँ पर देखो नीम का पेड़ तो बड़ा बड़ा हो जाता है ना।
2: हाँ,
1: पर बेलपत्र में पता नहीं क्यों कि ये, और यहाँ नहीं, क्यों नहीं होता ये नहीं पता मुझे। तो आगे का वृतांत क्या है राजेंद्र जी?
0: लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की आराधना करते समय सप्ताह के दिनों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन दिनों में से एक दिन ऐसा भी है जब बेलपत्र को तोड़ना अशुभ माना जाता है। ज़्यादातर लोग यह सोचकर शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेलपत्र अर्पित करने से शिव अधिक प्रसन्न होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
2: अच्छा।
0: शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी पेड़ से पुष्प व उसके पत्तों को बेवजह तोड़ना पाप का भागी बनाता है।
1: शांता, ये बात तो मुझे नहीं पता था राजेंद्र जी।
0: हाँ, तो अब आपको पता चल गया था, आप मनन करें इस विषय में, इसलिए इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही लें। बेलपत्र भी एक बेलपत्र भी एक पौधे पर होते हैं, वैसे तो एक ऐसा भी समय होता है जब बेलपत्रों को तोड़ना मना ही रहता है, लेकिन उस दिन के बारे में इतनी आसानी से पता नहीं लगाया जा सकता, इसलिए बेलपत्र तोड़ते समय यदि कुछ मंत्रों का जाप करें तो इस पाप से छुटकारा पा सकते हैं।
1: तो राजेंद्र जी, क्यों ना हम एक गीत की ओर बढ़ते हैं। राजेंद्र जी
0: जी,
1: गीत की ओर बढ़ने से पहले
0: हाँ
1: भला ये तो बता दो कि मंत्र कौन सा।
0: हाँ, वो मंत्र है अमृतोद्भवा श्री वृक्षा महादेव प्रिया सदा गृह्णामि तवा पत्राणि शिव पूजार्थ मादुरात। इस मंत्र का अगर आप उच्चारण करेंगे बेलपत्र को तोड़ते समय
2: जी,
0: तो कोई पाप नहीं लगेगा आपका।
1: राजेंद्र जी, पर आप तो संस्कृत का दाता, संस्कृत का दाता, तो इसे थोड़ा से और हमारे भाषा में, हमारे सरनामी में थोड़ा से बता दे कुछ।
0: हाँ, संस्कृत का दाता नहीं बोलेंगे, संस्कृत का ज्ञाता बोल सकते हैं। दाता मतलब जो देने वाला, ज्ञाता मतलब जो जानने वाला, थोड़ा हाँ, जानने वाला
1: जी। और आप तो हम लोग के गुरु है, तो हाँ, इसमें थोड़ा से और बोले तो सरनामी में कुछ बोल दे।
0: अमृतोद्भवा श्री वृक्षः, अमृत अमृत का समान है महादेव को उपासना करीला सदा, मतलब रोज। गृहणामी ग्रह घर में, तब पत्राणी इसके बाद पत्र, पत्र को शिव पूजार्थ मादरात शिव की पूजा करने के लिए तोड़ सकते हैं, ऐसा इसमें एक मंत्र है।
1: सही बात। तो इस बात को अब हम सबको ये ज्ञान को प्राप्त हो गया है कि बेल पत्र तोड़ने में भी मंत्र का और उपयोग किया जाता है ताकि आपको कोई प्रकार के दोष ना लगे।
0: हाँ, क्योंकि बेल पत्र अमृत के समान होता है और हम श्री वृक्ष से, जो महादेव का वृक्ष है, उससे लेते हैं हम लोग, तो पहले उनकी आज्ञा लेनी होती है, इसके बाद शिव की पूजा के लिए पत्र तोड़ना होता है। यही इस मंत्र का उद्देश्य भी है।
1: क्यों ना एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं राजेंद्र जी।
0: हाँ,
1: तो हम फिर आगे कार्यक्रम बढ़ाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश है और ज्योति का प्रकाश का लक्ष्य बस यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहे हैं उसमें थोड़ा से और प्रकाश आ जाए और हमारे विशेषज्ञ लोग जो हम लोग के लिए खोज खोज करके, चुन चुन करके और विषय रखते हैं, और हमारे साथ राजेंद्र जी और शांता जी और मैं खुद यहां लेकर आपके लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो देखते हैं कौन सा गीत इस समय राजेंद्र जी जो प्लेयर पे रखने वाले हैं।

भोलेनाथ की जो धुन है ओम जय शिव ओंकारा, उससे पहले की हम वो बाद में, और ओम जय शिव ओंकारा के पहले जो डम डम डम डमरू बजे, इसके बाद शिव ओंकारा होता है, तो हमने थोड़ा सा लिरिक्स पहले सुना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डमरू की तरफ, डमरू बजेगा और डमरू डमरू जो है मटकी में बजता है।

0: डम डम डम डमरू बजे, जब डमरू बजता है तो इसके बाद आगे का कार्यक्रम चालू हो जाता है। शास्त्रों में बेलपत्र तोड़ने को निश्चित काल तय है। हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। 6 माह तक बासी नहीं होता बेलपत्र, बेलपत्र 6 माह तक बासी नहीं होता, इसलिए आपको जाके सरनाम और इंडिया से बेलपत्र मंगा के 6 महीने में एक बार मंगा लो और इसके बाद 6 महीने तक चढ़ता रहेगा। मैंने देखा है गंगाराम पंडित जी के यहाँ के भी 6 महीने तक बेलपत्र रखा ही रहता है। मैंने बहुत बेलपत्र उनके यहाँ देखे हैं, बीच में चढ़ाते रहते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार अगर आपके पास शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर से ही दूसरों के चढ़ाए हुए बेलपत्र को उठाकर धो लें और फिर उसको श्री भगवान शिव पर चढ़ा दें, यह उतना ही पूजनीय माना जाएगा। साथ ही बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं होता है।
1: 6 महीना तक बेलपत्र बासी नहीं होता?
0: नहीं,
1: पर अभी आपने कहा कि कोई चढ़ाया हुआ बेलपत्र तो उसे आप धोकर भी चढ़ा सकते
0: हैं। हाँ, चढ़ाया हुआ बेलपत्र को दोबारा धो लिया जाए तो वो भी उतना ही माना जाता है,
1: उतना ही कीमती हो जाता है। ओके, यानी कि बेलपत्र धोकर भी चढ़ा सकते हैं।
0: हाँ, धो के चढ़ा सकते हैं
1: और 6 महीना तक वो
0: बासी नहीं होता जी। दूसरा नंबर है कि घर की दरिद्रता होती है दूर। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार और द्वादशी के दिन बेलपत्र के पेड़ का पूजन करना चाहिए, इससे ब्रह्म हत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसका पेड़ लगाने से घर की दरिद्रता दूर होती है और निरंतर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
1: लक्ष्मी का प्राप्ति
0: जी,
1: यानी कि पैसा अंदर आए।
0: हाँ, लक्ष्मी की प्राप्ति मतलब लक्ष्मी का आशीर्वाद है तो पैसा धन की कोई अन्न धन
1: पैसे तो कहने के बात यह है कि लक्ष्मी ना सिर्फ पैसा है पर वातावरण बदल जाता है।
0: हाँ, लक्ष्मी ना सिर्फ पैसा है, वातावरण बदल जाता है, अन्न भी है, धन भी है और वस्त्र भी है।
1: सही बात,
0: तो सब चीज में लक्ष्मी की कृपा होती तो हो जाता है। काशी समान होती है ऐसी जगह, पुराणों के अनुसार जिस स्थान में बहुत सारे बेलपत्र के पेड़ हों जैसे घना वन, वह स्थान काशी के समान पवित्र माना जाता है। वहाँ हर रोज शिवलिंग की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सभी परेशानियों का अंत हो जाता है।
1: तो ये एक काशी का समान ये क्यों कहे आपने राजेंद्र जी, क्योंकि काशी तो एक तीर्थ स्थान है ना?
0: हाँ, काशी वाराणसी जो भारत में है वो भगवान शंकर की नगरी है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने वो नगरी जो है अपने त्रिशूल पे बसाई हुई है। इस दुनिया में उसका नहीं है, वो भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में अलग से बसाई है, वो काशी की बात चल रही है।
1: तो शांता जी भी कुछ कहने वाले हैं राजेंद्र जी, देखते हैं कि बटन उसका ऑन होता है आज कि नहीं।
0: शांता नहीं जी? बटन ऑन ही है, आप कहिए शांता जी।
1: कही
2: नहीं, काशी जैसे आपने कहा त्रिशूल पे धारण की है शिव जी ने
0: जी।
2: अच्छा, हाँ तो
0: जो
2: प्रलय होगा जैसे हम जानते हैं कि फिर भी जो काशी पे शिव जी जो अपने त्रिशूल पे धारण की है वो नहीं डूबेगा?
0: नहीं, जब प्रलय इस धरती का होगा तो इस धरती में काशी नहीं आता है तो वो तो भगवान शंकर बताएंगे कि वो डूबेगा कि नहीं डूबेगा, क्योंकि उनके त्रिशूल पे बसा हुआ है।
2: अच्छा,
0: हाँ। और एक बार एक कथा के अनुसार ऐसा आता है कि एक श्राप किसी को दे दिया था कि आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, तो फिर वो काशी चले गए थे क्योंकि काशी इस दुनिया में नहीं आता है, वो तो भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसा हुआ है।
2: अच्छा,
0: हाँ। तो अगले जो बात है, पेड़ लगाने से बढ़ती है सुख शांति। घर के आंगन में बेलपत्र का पेड़ लगाने से घर पाप नाशक और यशस्वी हो जाता है। अगर पेड़ घर के उत्तर पश्चिम में लगा हो तो इससे यश बढ़ता है, वहीं घर के उत्तर दक्षिण में पेड़ हो तो सुख शांति बढ़ती है और बीच में हो तो मधुर जीवन बनता है। तो ये देखो बेलपत्र की इतनी महिमा,
1: इतना महिमा। राजेंद्र जी, इस पे मैं जरूर कुछ कहना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा हुआ ऐसा हुआ, एक बार मैं इंडिया गया, आज से बहुत साल पहले की बात है, कुछ 20 साल पहले की बात है। तो वहाँ पर दिल्ली में सफ़र करते करते हम लोग पहुँचे गांधी जी का, जहाँ पर उनको देहांत हुआ था,
0: राजघाट, जहाँ पे उनको सम्मान से रखा गया है।
1: नहीं, राजघाट पे तो वहाँ पर उनका दाह संस्कार किया गया।
0: अच्छा,
1: जहाँ वो म्यूजियम बनाया गया।
0: ओके, हाँ,
1: म्यूजियम
0: ठीक है।
1: तो हम वहाँ गए तो वहाँ पर हम पीछे में, और क्योंकि बगीचा बढ़िया बनाया गया ना,
0: हाँ,
1: तो वहाँ एक इतना बड़ा सा पेड़ था और उसमें गोला गोला सा फल की तरह लटके
0: बड़े,
1: ये बेल पत्र का फल इतना भारी भारी, और क्या उसे भी चढ़ाया जाता है या नहीं?
0: हाँ, वो बेल पत्र का जो फल है वो तो चढ़ाया ही जाता है। बेल पत्र मतलब पत्ता और बेल पत्थर मतलब फल, उसको बेल पत्थर बोलते हैं, पत्थर जैसा मजबूत होता है।
1: हाँ,
0: वहाँ उसको भी भगवान शंकर पे चढ़ाया जाता है, पूजा में चढ़ता है।
1: ओके ओके,
0: फल के रूप में।
1: शांता जी, अगर इस पे आप कुछ नई दलांस में हम सबको सुना सकते तो बहुत अच्छा होता।
2: हाँ, हम तैयार है।
1: तैयार है तो राजेंद्र जी, शांता जी इसी वृतांत अंतर्गत कुछ नई दलांस में चलाने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, और उसके बाद में हम सब एक सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।
0: जरूर जरूर।
2: हाँ जी, तो यहाँ से हम डच भाषा में नई दलांस में बेल व पत्र के बारे में कहूंगा। बेल व पत्र हेव अन हेल स्पेशल रिलाट सी मेथ लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा इज डोल ऑफ बेल व पत्र ऑफ द बेल ब्रदरन। As a person met a helder face doet Lord Shiva bid and a bel patra aanbied aan de Shivling, zegen de Heer hen met alles wat hij wenst. Daarom is belwa patra een van de belangrijkste ingrediënten die wordt gebruikt voor de aanbidden van Lord Shiva. Belwa bladeren zijn van de houten appelboom. Dit blad is driebladig, wat de heilige drie-eenheid betekent: Brahma, Vishnu en Mahesh. Het betekent ook dat drie ogen van Lord Shiva. Volgens Shiv Mahapuran is de bel het symbool van Lord Shiva. En dat is een beetje in het kort uitgelegd wat belwa patra is en voor wie het gebruikt wordt.
1: दोस्तों, जैसे आपने सुनी कि शांता जी भी नीदरलैंड्स में, जो हमारे बच्चे खास करके जो हिंदी भाषा और नहीं समझते हैं, हमारे सरनामी भी नहीं समझते हैं, तो छोटा रूप में शांता जी भी कोशिश करके, खोज करके और आपको नीदरलैंड्स में इस बारे में सुनाए। राजेंद्र जी, कौन सा गीत अभी आप रखने वाले, क्योंकि आपने कह रहा था कि धमाकेदार गीत आने वाले हैं।
0: हाँ, धमाकेदार जो गीत है वो है जय जय शिव शंकर सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा भजन है भगवान शंकर का, और वही हम रखने वाले हैं, सब लोग सुनेंगे।

0: जय जय शिव शंकर। आपने बहुत ही अच्छा जो अभी भजन सुना है, द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोतम। आज जो श्रोताओं आप जो सुनेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग स्त्रोत का जो, तो सबसे पहले हम एक शुरुआत करते हैं स्त्रोत से। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जयिनी महाकाल ओंकार ममलेश्वर प्रलय्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यं भीमशंकरं सेतु वंदे तु रामेशं नागेशं दारुकेवनये वाराणस्यं तु विश्वेशं त्र्यंबकं गोमतीतटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशा च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि साय प्रातः पठनेन सप्तजनं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इन ज्योतिर्लिंग का जो 12 ज्योतिर्लिंगों का जो स्मरण कर लेता सुबह शाम, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं केवल स्मरण मात्र से ही। इस प्रकार भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। इस स्त्रोत के जाप मात्र से व्यक्ति को शिवजी के साथ ही सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो भी व्यक्ति इन स्त्रोत को नियमित जप करता है उसे महालक्ष्मी की कृपा भी हमेशा प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं?
1: राजेंद्र जी, जरूर जानता हूँ, थोड़ा से जरूर जानता हूँ, क्योंकि भारत एक ऐसा दुनिया है, इतना बड़ा देश है जहाँ पर ना कि सिर्फ द्वादश ज्योतिर्लिंग पर और भी लिंग है ना।
0: हाँ, भारत में द्वादश ज्योतिर्लिंग तो है ही हैं, बहुत सारे जो और लिंग हैं। तो ज्योतिर्लिंगों की कुछ लोगों का कहना है, जो महापुरुषों का कहना है और कुछ जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं उनका कहना है कि इनका दर्शन जरूर करना चाहिए। तो संजय जी, आप बताइए कि आपने कितने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं?
1: राजेंद्र जी, जरूर, मुझसे तो अभी तो जवान हूँ, अभी तो जीवन के प्रारंभ हुआ है, अभी तो ज्योति का प्रकाश में छोटा सा ज्योत जल रहा है और प्रकाश आने वाले हैं। तो जरूर, पहला दो ज्योतिर्लिंग हमने जो गुजरात शहर में, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ पर शिव जी का बड़ा सा मूर्ति है, नागेश्वर
0: सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथ है।
1: हाँ जी,
0: एक सोमनाथ है और दूसरा नागेश्वर है।
1: हाँ, सोमनाथ और नागेश्वर, तो यही दोनों का अभी दर्शन हुआ है। और ख़ास करके नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ है ना राजेंद्र जी, तो जहाँ जैसे कि अभी आप कह रहे थे कि बेलपत्र वहाँ पर और चांदी वाला बेलपत्र मिलता है।
0: हाँ,
1: तो वो चांदी वाला बेलपत्र आप हर बार धो करके स्नान उसे करा करके और फिर चढ़ा सकते हैं, कहते हैं।
0: चांदी वाला बेलपत्र जिसके बाहर में चांदी का वक्र बना होता है।
1: हाँ जी,
0: हाँ, तो वो लोग वैसे करते हैं कि उसको हर बार धो के उसी को छुड़वाते हैं।
1: जी, तो हमारे सुनने वालों ये इस बात को जानते या ना हो तो ये बात भी जान ले कि अगर आप गुजरात का ज्योतिर्लिंग और का दर्शन करने के गए तो ये मत भूलना, अपने लिए लेकर आना वो चांदी वाला, और वहाँ मिलता है बेलपत्र, तो आप अपने लिए हमेशा प्रयोग कर सकेंगे। और जो सोमनाथ है वो, उसका तो वृतांत तो बड़ा अद्भुत है राजेंद्र जी।
2: तो संजय जी, मैं ये कहना चाहती हूँ आपके बात पे, जैसे आप कहने कहा ना कि चांदी का बेलपत्र, तो जैसे हमारे यहाँ हॉलैंड में नहीं मिलता, तो हम यहाँ पे भी सोनार लगे जाकर ऐसे चांदी वाले बेलपत्र बना सकते हैं?
1: मेरे ख्याल से मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये शायद राजेंद्र जी इस पे कुछ कह सकेंगे।
0: हाँ, हम यही कहेंगे कि जो

0: दाम है।
1: अच्छा, तो उसमें कोई धातु मिलाते होगा?
0: चांदी धातु है ऑलरेडी, और जब आप वहाँ पे जाते हैं नागेश्वरम दारुकेवन में, तो वहाँ पे एक वस्त्र पहनाते हैं। अगर आपको पूजा करनी है अंदर और किसी का काल सर्प योग अगर है
1: जी,
0: तो वहाँ पे पूजा करके उसका काल सर्प योग समाप्त हो जाता है। हाँ, नाग नागिन का जोड़ा की जोड़ा मिलता है चांदी का, उसको वहाँ पे लेके वहाँ पे पूजा होता है। उस पूजा करने के बाद काल सर्पयोग जो होता है उसको दूर हो जाता है। तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है वहाँ पे जाते हैं, मैं भी गया हूँ। मैं तो द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन किया, तो मैंने काल सर्पयोग के लिए नहीं गया, मैं ऐसे दर्शन के लिए गया था, तो मैंने ये इस प्रकार से देखा।

0: तो इस पर कहते हैं महाकाल जी, महाकाल कहते हैं, ना हो उदास तू मेरे लाल, ना हो उदास तू मेरे लाल, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आस पास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरे विश्वास हूँ, ये कहता है महाकाल जी।
1: सुंदर रूप से जो अपना पिठाड़ा से निकाल कर और शांता जी ने हम सबके लिए और सुनाए। राजेंद्र जी, शांता जी इसी प्रकार से हम सबके लिए लेते आएंगे और हम सबके सुंदर सुंदर और कहावतें जरूर सुनाए। राजेंद्र जी, आगे के कार्यक्रम क्या है और
2: आगे
1: क्या
2: का कार्यक्रम
1: आप सुनाने
2: है?
1: वाले हैं।
2: इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। अब आते हैं कि कौन से द्वारिका, कौन सा ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है। सोमनाथ, सोमनाथ की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि श्लोक में भी सोमनाथ ही आया है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है,
1: सबसे बड़ा,
2: सब पहला ज्योतिर्लिंग।
1: राजेंद्र जी, ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग,
2: सोमनाथ की आपने दर्शन भी किए हैं?
1: किया, पर वहां पर जब चले जाओ ना, बिल्कुल उसके पास है ना, कबले
2: समुद्र के किनारे,
1: समुद्र
2: में
1: के किनारे
2: जी, गुजरात में,
1: गुजरात
2: के किनारे,
1: समुद्र के किनारे शीतल हवा बह रहे हैं और वहां पर सबसे मूल्य बात यह है कि हम लोगों का दर्शन वहां हुआ आरती का।
2: हाँ।
1: तो आरती इतना विशाल रूप से वहां होता है
2: जी,
1: कितना भीड़ भाड़।
0: भारत में जहाँ आरती होता है शाम सुबह शाम, ऐसे तो

0: सुबह में और शाम में ऐसे तुम घूमोगे कोई आदमी ऐसे नहीं देखेगा, बट जब वक्त होता है आरती के
1: समय पे
0: तो दाव नहीं पड़ता है कि कहाँ तुम हो, चलने के लिए दाव नहीं होता वहाँ
1: तो राजेंद्र,
0: इतना श्रद्धालु से सब आ जाते हैं।
1: तो ऐसा चीज हॉलैंड में क्यों नहीं बनाया जाता राजेंद्र जी?
2: आप हॉलैंड के महाराज आप है, आप बनाइए, हॉलैंड में आपका पूरा हक है बनाने का, बनाइए आप हॉलैंड में।
1: ऐसा होना चाहिए कि यहाँ हॉलैंड में भी कुछ बनना चाहिए कि लोग जाने कि अभी आरती को जाना है और हाँ, जा तो, करके पूरा कार्यक्रम आरती का।
2: तो आप बताते रहे थे कि जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के हमारी महाराज हैं वो बनाना चाह रहे हैं एक मंदिर
1: जी,
2: तो उसी मंदिर में इस प्रकार से अभी से आपके पास तो संदेश रेडियो से बोलना है और इतना बजे आरती होगी तो सब लोग आ सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है, वो मंदिर जल्दी से जल्दी बने और यहीं से आप अनाउंस करें कि इतना बजे आज आरती होगा इस प्रकार का, तो आप उसमें
1: कि आरती का कार्यक्रम हॉलैंड देश में भी होए।
2: हाँ होए, जरूर होए।
1: चलो आगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में।
2: हाँ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं है, पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राष्ट्र के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने 6 रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने ही की थी।
1: ये दक्ष प्रजापति कौन है राजेंद्र जी?
2: हाँ, दक्ष प्रजापति जो हैं वो भगवान ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और दक्ष प्रजापति राजा थे और सती के पिता हैं और भगवान शंकर के ससुर हैं। तो दक्ष प्रजापति,
1: ये वही दक्ष प्रजापति है।
2: हाँ
1: जी जी जी जी, तो कथा के अनुसार हम सब कई बार ये ओ तो यही
2: ये वही दक्ष प्रजापति हैं
1: जी, तो उन्होंने श्राप दे दिया था चंद्रमा को।
2: हाँ
1: ओके, तो आगे
2: 6 रोग होने का श्राप दिया था।
1: 6 रोग?
2: हाँ,
1: रोग कहते हैं बीमारी का,
2: 6 रोग एक बीमारी का नाम है, उसमें पूरा स्किन का प्रॉब्लम हो जाता है।
1: ओके
2: हाँ, तो उस इसलिए चंद्रमा को आप जब देखते होंगे तो उनमें थोड़ा धब्बा दिखाई देता है।
0: वाकई में?
1: अच्छा, तो राजेंद्र जी हमें तो थोड़ा से और जल्दी करना है।
2: हाँ, तो इसके बाद हम चलते हैं मल्लिकार्जुन पे। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है। अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो मल्लिकार्जुन जो है आपका आंध्र प्रदेश में है और हैदराबाद से 150 किलोमीटर आगे है। आपको बीच जंगल में बहुत बड़ा जंगल मिलता है और उस जंगल की विशेषता ये है कि जब आप जाएंगे तो आपको एक जंगल के जो टोल टैक्स है वो लेना पड़ेगा और वो टोल टैक्स आपको जब ले तो उसको आप जो टोल की पर्ची देते हैं आपको
0: हाँ।
2: वो फेंकना नहीं, जंगल का सफाई का ध्यान रखते हैं वो लोग।
0: अच्छा।
2: तो एक सीख मिलती है वहाँ से कि आप उस पर्ची को संभाल के रखिए, जब 100 किलोमीटर पार हो जाता जंगल तो उसके बाद आपको वो पर्ची वापस देनी है। तो जब आप पर्ची वापस देंगे तो वो कागज़ के बदले आपको पैसा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कागज़ को कहीं इधर उधर नहीं फेंका, संभाल के रखा, तो उससे एक जंगल की खूबसूरती बनी रही। किसी भी प्रकार का कोई भी कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और जब भी आपको मौका लगे कोई डस्टबिन मिले तब ही डालना चाहिए। तो उस जगह से ये भी अपने को एक सीखने को मिलता है, एक सीख सीखने को मिलती है।
1: तो राजेंद्र जी, इस बात पे तो मुझे भी कुछ याद आ गया कि ऐसा हुआ एक बार कि हम लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, आगरा जा रहे थे
2: जी,
1: दिल्ली से। तो टोल हम लोग खरीदे ना।
2: हाँ।
1: तो वो रिटर्न का था।
2: हाँ।
1: पर ये हुआ कि बस खरीदे, बस थोड़ा दूर गए, बस जेब से निकाल करके उन्होंने फेंक दिया कागज।
2: हाँ।
1: लौटने पे इतना मुसीबत हुआ क्योंकि बस आप खरीद सकते हैं दूसरा बार, वो खरीदना भी पड़ा।
2: हाँ।
1: पर उन्होंने ये प्रश्न रखा कि आपके क्यों नहीं है रिटर्न का, क्योंकि वो गाड़ी दिल्ली का था और उसको पता था कि ये उस तरफ से आए हैं।
2: हाँ।
1: तो काफी गड़बड़ हुआ। तो ये एक संदेश है कि आप अगर टोल का जो कार्त यानी कि जो पर्चा लिए हैं
2: जी,
1: तो उन्हें संभाल कर रखना चाहिए और अपना प्रकृति को उसमें कोई प्रकार से कचरा आदि ना छोड़े।
2: जरूर।
1: तो तीसरा लिंग का नाम क्या है?
2: महाकालेश्वर।
1: महाकालेश्वर।
2: हाँ, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया आपको मल्लिकार्जुन के बारे में।
1: बता दो।
2: वहाँ पे लड्डू मिलते हैं बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े लड्डू।
1: उतना बड़ा? वो तो हमारे सिर की तरह है ना।
2: हाँ, सिर से थोड़ा छोटा रहता है लेकिन बहुत बड़ा बड़ा लड्डू। आपको चार लड्डू मिलता है, वो लड्डू एक आप खाइए, एक अपने साथ जो उसको खिलाइए, दो घर ले आइए, एक रिश्तेदार को दीजिए, एक घर में दीजिए। एक लड्डू से बहुत सारे लोग खा सकते हैं, इतने बड़े बड़े लड्डू वहाँ पे मिलते हैं।
1: वो स्पेशल चीज है।
2: हाँ, स्पेशल चीज। तो जो लोग जाना चाहते हैं तो उनको अगर पहले से कोई जानकारी हो, मंदिर के थोड़ा पीछे एक बहुत बड़ा जगह बना है जहाँ पे लड्डू बनते हैं और वही लड्डू की एक पर्ची लेनी पड़ती है, पर्ची दे वो लड्डू लो पैकेट में एकदम बढ़िया से पैकिंग करके वो लोग देते हैं और वही लोग बैठ के भी खाते हैं। तो जैसे किसी लोग का व्रत रहता है, उपवास रहता है, वो एक लड्डू खा ले तो पूर्ण हो जाता है
1: पूरा।
2: हाँ, पूरा।
1: ओ, तो ये बात तो हमें पता।
2: हाँ, लड्डू वाली बात जरूर आप जब जाए वहाँ पे तो ये जरूर ध्यान रखें।
1: ध्यान रखें पर ये है खास करके मल्लिकार्जुन।
2: मल्लिकार्जुन में।
1: चलो तो आगे देखते हैं, मल्लिका अर्जुन जो जाएंगे तो लड्डू का ध्यान होगा।
2: जरूर ध्यान रखना। आगे की बात करते हैं महाकालेश्वर की। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है। भस्मारती का आप जानते हैं?
1: ना।
2: भस्म मतलब एस, आस,
0: आस,
2: राख,
1: राख,
2: राख से आरती होती वहाँ पे, भस्मारती उसको बोलते हैं। महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है। तो जब आप महाकालेश्वर में जाएंगे
0: जी,
2: तो एक किलोमीटर रेलवे स्टेशन से अगर जाएंगे तो एक किलोमीटर पहले ही ट्रेन छोड़ देती है और वहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं।
0: अच्छा।
2: रास्ते में भांग बहुत अच्छी मिलती है, अगर आप थोड़ा सा भगवान शंकर का प्रसाद लेना चाहते हैं तो एक गिलास भांग पीजिए।
1: तो राजेंद्र जी एक भांग का गीत चला दो।
2: हाँ, भांग जरूर चलाएंगे, भांग का गीत। और इस प्रकार से आप वहाँ पे जब जाएंगे तो, और सुबह सुबह वो भस्म आरती 4 बजे होती है।
1: सुबह सुबह?
2: हाँ, 4 बजे होती है।
1: 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त उसे कहते हैं,
2: ब्रह्म मुहूर्त में। और जब आप जाते हैं महाकाल में तो वहाँ पे गंगा जल ले जाते हैं लोग, तो गंगा जल वहाँ पे जाने नहीं देते, एकदम नज़दीक दूर से आप एक पाइप लगा है, जब रास्ते में जाते हैं वहाँ से उस पाइप में डाल देंगे तो वो घूमते हुए वो सीधा आपका चढ़ जाएगा वहाँ। आपने यहाँ डाला पाइप में,
1: हाँ जी,
2: एक बर्तन में, बर्तन से पाइप लगाया, पाइप से डायरेक्ट आप जाएंगे तो डायरेक्ट वो गंगा जल या जो भी आप दूध है या
1: चढ़ाना चाहते हैं
2: है, तो वहाँ चढ़ जाएगा। तो आप उसको वहाँ पे टीवी में देख लेंगे कि वहाँ पे चढ़ गया।
1: उतना दूर?
2: हाँ, उतना दूर। तो वैसे घूम के जाना पड़ता है, बहुत लंबी लाइन लगती है, कभी कभी तो 4-5 घंटे भी लगते हैं, कभी कभी 2 घंटे भी लगते हैं, कभी कभी 6 घंटे भी लगते हैं, डिपेंड करता है कि कितने लोग आए
0: जी।
2: और वहाँ 2 रास्ते, एक रास्ता आगे की तरफ से VIP दर्शन, उसके 500 का पर्ची कटता है, और एक लंबा रास्ता है, तो ज़्यादा करके लोग लंबा रास्ता जाना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें भगवान शंकर के जो आप कष्ट को सह के जाएंगे तो उसमें ज़्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी ऐसा माना जाता है।
1: ठीक है, तो एक गीत की ओर बढ़ते हैं राजेंद्र जी।
2: जरूर एक गीत की ओर बढ़ते हैं। आप कुछ पूछना चाहते हैं महाकाल के बारे में?
1: महाकाल के बारे में जरूर कुछ और संदेश दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई लड्डू का विशेष कार्य नहीं है ना, या कोई स्पेशल मिठाई जिस पे हम ध्यान दे सकते हैं?
2: हाँ, वहाँ पे बहुत सारे हर प्रकार का है लेकिन स्पेशल मिठाई नहीं, वहाँ पे कोई स्पेशल मिठाई नहीं ऐसे चढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पे भगवान शंकर के जो बूटी है वो चढ़ाई जाती है।
1: भगवान शंकर का बूटी? और ये कुछ खास बूटी है जैसे कि चंदन आदि और ऐसा?
2: नहीं, भगवान शंकर की बूटी तो होती है भांग और धतूरा।
1: भांग और धतूरा।
0: और ये धतूरा क्या होता है?
1: शांता जी ने पूछ लिया, धतूरा क्या होता है राजेंद्र जी?
2: गंगाराम पांडे जी के घर के बाहर जाएंगे तो वहाँ मिला धतूरा लगा हुआ है।
1: वहाँ तो मैंने देखा है भाटा ऑटोमेटिक लगा है।
2: नहीं, धतूरा भी लगा है।
0: धतूरा भी लगा है।
1: तो चलो वो जा करके, शांता जी जरूर आप वहाँ पर जा करके और देख सकते हैं कि किस प्रकार से और शिव जी का धतूरा, क्योंकि ये एक चीज है जो हॉलैंड में खूब होता है।
2: हाँ
1: हाँ, ये खूब होता है यहाँ हॉलैंड में धतूरा, और सोमर में सिर्फ ना
0: जी।
1: हाँ, पर हॉलैंड में ये खूब होते हैं और ये हम सब के यानी ज्यादा तादाद में लोग अपने घर पे ये बोए हैं।
2: अब आगे बढ़ते हैं, एक महाकाल का ओम नमः शिवाय का जो भजन चल रहा है वाला है उसकी ओर बढ़ते हैं।

0: ఉజ్జయిని మహాకాళేశ్వర ధామ మంగళం. ఓం మంగళం ఓంకారేశ్వర మంగళం, మహాకాళేశ్వర మంగళం. అభి ఆపనే మహాకాల్ కా జో సునా హై, భజన సునా హై, బహుత్ హి అచ్చా హై. ఇస్కే బాద్ బఢ్తే హై ఆగే ఓంకారేశ్వర కీ తరఫ్. ఓంకారేశ్వర జ్యోతిర్లింగ మధ్య ప్రదేశ్ కే ప్రసిద్ధ శహర్ ఇందోర్ కే సమీప స్థిత హై. జిస్ స్థాన పర యహ జ్యోతిర్లింగ స్థిత హై ఉస్ స్థాన పర నర్మదా నదీ బహతీ హై ఔర్ పహాడీ కే చారో ఓర్ నదీ బహనే సే యహా ఓం కా ఓంకార్ బన్తా హై. ఓం కా ఆకార్ జబ్ బన్ జాతా హై తో ఓం శబ్ద కీ ఉత్పత్తి బ్రహ్మా కే ముఖ సే హుయీ హై. ఇస్లీ కిసీ భీ ధార్మిక శాస్త్ర యా వేదో కా పాఠ ఓం కే సాథ్ హీ కియా జాతా హై. యా జ్యోతిర్లింగ ఓంకార్ అర్థాత్ ఓం కా ఆకార్ లియే హుయీ హై. ఇస్ కారణ ఇసీ ఓంకారేశ్వర నామ సే జానా జాతా హై. తో జబ్ ఆప్ జాయేంగే వహాన్ పే ఓంకారేశ్వర మే తో వహాన్ పే एक नदी को पार करना होता है, पुल बना हुआ है और नीचे उतरना होता है, नीचे उतर के फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ना होता है, हल्की पहाड़ी है.
1: आपने बोले कि पुल बना हुआ
0: जी,
1: पुल क्या चीज?
0: पुल न जाने ला
1: ना
0: पुल मतलब फ्लाईओवर,
1: फ्लाईओवर
0: हाँ, उसको एक जो नदी है
1: हाँ
0: उसके ऊपर से पुल बना है और फिर उससे सब नीचे उतरना है. जब नीचे नहाना है और जब आप उस नदी में नहा लेते हैं तो बहुत भूख लगता है.
2: अच्छा
1: ऐसा
0: है? हाँ ऐसा है. और फिर वहाँ पे ऊपर चढ़ेंगे
2: हाँ.
0: तो भगवान ओंकारेश्वर के दर्शन करेंगे, उसके बाद दूसरा बगल में एक और पिंडी है उनके दर्शन करते हैं. इसके बाद वहाँ पे बहुत सारे होटल बने, खाना खाने के लिए ढाबा बने हैं, लोग बहुत भूख लगती है तो वहाँ पे खाना खाते हैं.
1: तो इसमें
0: नर्मदा के जो नदी है उसमें
1: गंगा च जमुना चैवा गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल सनिधिं करु, तो सभी श्रेष्ठ नदियों में नर्मदा नदी पे
0: हाँ, गंगेश यमुनेश गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन संधिमन करु. ये मंत्र आप स्नान करते समय भी
1: प्रयोग कर सकते
0: हैं. तो नर्मदा का जल पीने से भूख ज्यादा लगता है.
1: ओ तो उसमें वो शक्ति है,
0: वो शक्ति है.
1: तो अब तो जाना पड़ेगा वहाँ. शांता जी आप गए नर्मदा नदी?
2: नर्मदा भी नहीं गई, हमने गए उत्तर के काशी के केदारनाथ धाम हमने गए और वाराणसी काशी विश्वनाथ हमने पहुँची, दर्शन हुए.
1: दो दर्शन हो गए.
0: बहुत अच्छा है, बहुत ही जल्दी आप सब ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे. आगे बढ़ते हैं केदारनाथ की तरफ. जब शांता जी ने केदारनाथ का नाम लिया तो आगे तुरंत केदारनाथ की ही बारी आ गई.
1: जैसे अब करना ही पड़ेगा राजेंद्र
0: हाँ
1: जी,
0: जरूर,
1: क्योंकि
2: बहुत अच्छा केदारनाथ.
1: शांता ने केदारनाथ का दर्शन कर लिया
2: जी. 15 किलोमीटर है चलने के लिए, अगर आप चलना नहीं चाहते
0: हाँ
2: तो...
0: पहले 14 किलोमीटर था लेकिन अब और थोड़ा ज्यादा हो गया, क्योंकि बीच में एक जो पहाड़ी टूट गई थी वो पूरा हिस्सा ही बह गया था. अब बहुत दूर से रास्ता, तो वो फिर 2 किलोमीटर ज़्यादा हुआ और गाड़ियाँ उस जो रास्ते वो जो जगह जहाँ पार्किंग थी वो भी पूरा ख़त्म हो गया.
2: अच्छा।
0: तो 5 किलोमीटर पहले पार्किंग करते हैं, तो कुछ लोग वहीं से पैदल जाते हैं तो 22 किलोमीटर हो जाता है. और जो लोग वहाँ जो लोकल गाड़ियाँ हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसमें जाते हैं
2: हाँ।
0: तो 5 किलोमीटर कम हो जाता है. अभी मैं जब पहले भी गया था और बाद में भी गया
2: हाँ।
0: 2014-13 के पहले जो था वो अलग है, अभी जो अलग है, तो कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा हो गया है इस समय जाने के लिए.
2: अच्छा
0: पहले हाँ। रास्ता कम था, अभी ज्यादा हो गया है
2: जी.
0: लेकिन भगवान, जब आपने देखा है कि त्रासदी से पहले पूरा वो सब एकदम क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन जो ज्योतिर्लिंग है उसके पीछे आके एक बहुत बड़ा पत्थर आया और वहाँ पे कुछ भी जो मंदिर है उसको कोई भी क्षति नहीं हुई. तो अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा होता तो भगवान शंकर, लोग जो कहते कि अपनी रक्षा न करें तो दूसरे के कैसे करेंगे, लेकिन उन्होंने देखा और वो पानी पूरा अंदर आया और वो वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर बनाया था पांडवों ने, इसलिए वहाँ पे पानी एक तरफ से आया दूसरी तरफ से निकल गया और मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई. और उसके पीछे जो बेग आता पानी का
2: हाँ।
0: वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर आकर लग गया
2: जी.
0: तो उससे पानी डिवाइड हो गया लेफ्ट एंड राइट एकदम मंदिर पे. देखते हैं कि मंदिर को कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्षति नहीं
2: हुआ,
0: कुछ नहीं हुआ. अभी जो लोग जाते हैं दर्शन के लिए तो वो पत्थर का दर्शन जरूर करते हैं और वहाँ पे तो बहुत पूजा होती है.
2: अच्छा
0: केदारनाथ की बात चल रही थी. केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुखों ज्योतिर्लिंगों में आता है. यह उत्तराखंड में स्थित है. बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है. हाँ। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है।
1: राजेंद्र जी, ये अगर मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछ लूं कि जो 2013 में जो वृतांत हुआ था ना,
0: जी
1: यही केदारनाथ के पास हुए थे?
0: हाँ। केदारनाथ में ही हुआ था,
1: वही हुआ था।
2: वही हाँ। हुआ।
1: एकदम उतने बहुत गंभीरता से वो आए।
0: हाँ, क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा केदारनाथ के ऊपर एक ताल था बहुत बड़ा, वो टूट गया था और एकदम पानी बेग से आया। तो जब पहाड़ों का कोई ताल टूट जाता है, बड़ा ताल, और पानी का जो खुल जाता है एकदम बेग से चलता है, तो वो पूरा लेके चलता है अपने साथ,
2: वो सब अपने
0: मिट्टी पत्थर पेड़ पौधे साफ सफाई करके
2: साफ
0: करते हुए चलता है।
2: हाँ।
0: लेकिन वो इतना ज्यादा सफाई कर दिया था कि बहुत ही ज्यादा, वो बात तो दोहरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो
1: काफी व्यक्ति का मृत्यु भी हुए थे,
0: बहुत लोगों का, हजारों लोगों का। लेकिन वो जो नहीं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम तो केवल द्वादश ज्योतिर्लिंग की बात कर रहे हैं। यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है, उसी प्रकार का महत्व शिव जी के केदार क्षेत्र का भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भीमा शंकर की तरफ। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे स्थित में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। भीमा शंकर पहाड़ी के ऊपर है, एकदम काफ़ी ऊपर जाना पड़ता है और फिर नीचे जाना पड़ता है।
2: अगर ये तीर्थ करना चाहते तो एक एक बार में ये सभी तीर्थ नहीं कर पाओगे, काफी दूर है।
0: हाँ, बहुत दूर है। भारत के कुछ पूरब में, कुछ पश्चिम में, कुछ उत्तर में, कुछ दक्षिण में है, तो एक बार में तो नहीं कर सकते हैं
2: ना।
0: आपको काफ़ी समय लगेगा। लेकिन अगर आप एक ही बार में भी करना चाहे, यहाँ से नीदरलैंड से जाके भारत में, तो हो सकता है।
1: राजेंद्र जी, यहाँ से जैसे हम सब सत्संग करने को जाते हैं, तो लोग हैं जिन्होंने कर चुके हैं।
2: हाँ,
1: यहाँ हॉलैंड में कई कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके हैं, पर अभी तो हमारा दूसरा हुआ है और शांता जी आपका भी दूसरा हो चुके हैं,
2: दो हो गए।
1: तो अभी देखेंगे कि कैसे आगे हम सब बढ़ेंगे, क्योंकि राजेंद्र जी आपने 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके।
0: हाँ जी,
1: द्वादश।
0: हाँ, मैं तो 12 का तो सबका कर चुका हूँ, लेकिन कई ज्योतिर्लिंग ऐसे जिनका कई बार भी कर चुका हूँ। जैसे दिल्ली से नज़दीक जो ज्योतिर्लिंग पड़ते हैं उनका, और उत्तराखंड के जो 4 धाम है, तो मैं तो हर साल जाता था 4 धाम में।
2: हाँ।
0: तो अभी कोरोना के चलते हुए नहीं जा पाया हूँ, जाऊँगा। लेकिन जो ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, वो दिल्ली से नज़दीक है, वो एक रात की जर्नी है और एक दिन में पूरा करके और अगली रात वापस आ सकते हैं। तो हम लोग अधिकतर जाया करते थे महाकाल में,
2: महाकालेश्वर
0: जी। तो इस प्रकार का जो आपने सुना भीमा शंकर का, फिर इसके बाद आते हैं काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी को वाराणसी भी बोलते हैं और काशी भी बोलते हैं। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। जैसे आपका अभी क्वेश्चन था कि प्रलय आने पर बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा, तो इसमें कहा जा रहा है कि बना रहेगा, क्योंकि ये भगवान शंकर के त्रिशूल पे, इसकी रक्षा के लिए भगवान शिव इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को उसके स्थान पर पुनः रख देंगे।
1: जी, तो ये हुआ काशी विश्वनाथ। और
0: मैंने देखा यहाँ का महत्व, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, हमने साउथ के लोग भी और नॉर्थ के लोग भी, काशी में जब उनका उम्र ज़्यादा होता तो वो कहते हैं हम काशी में ही अपना शरीर का त्याग करना चाहते हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग अपना घर लेके और काशी में रहते हैं। तो काशी भगवान शंकर जब ये प्रलय आएगा, अभी इसमें भी आया है वृतांत की, प्रलय आएगा तो भगवान शंकर काशी में, काशी को अपने त्रिशूल में उठा लेंगे फिर, और जब प्रलय समाप्त हो जाएगा फिर नीचे रख देंगे, जमीन पर रख देंगे। तो काशी वैसे ही बनी रहेगी। और काशी में कहा जाता है कि काशी में मरने वाला व्यक्ति
2: जी
0: स्वर्ग को जाता है और महगर में मरने वाला व्यक्ति नरक को जाता है, ऐसी मान्यता थी। लेकिन कबीर ने इसको एकदम खंडन किया और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आप महगर में मरने के बाद भी स्वर्ग को ही जाएंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो काशी में मरने के बाद भी नरक को जा सकते हैं। तो कबीर दास चले गए थे मरने के लिए महगर में। महगर एक स्थान है, इस ये शिक्षा यही मिलती है कि अच्छे कर्म करो, जहाँ जहाँ भी आप हैं वहीं आपको स्वर्ग की जैसी ही अनुभूति होगी। अनुभूति का मतलब महसूस
2: जी।
0: तो आप नीदरलैंड में कुछ बोलना चाहते हैं डच में इस बारे में?
2: नहीं
1: बोले, नहीं बोलना चाहते।
0: ओहो, तो कोई बात नहीं, आप हम चलते हैं एक।
1: शांता जी क्यों नहीं बोलना चाहते? क्योंकि मैं देख रहा हूँ राजेंद्र जी आप एक दूसरा गीत की ओर बढ़ रहे हैं।
0: हाँ,
1: और जरूर गीत चलाते चलो, चलते चलो, चलाते चलो। और यहाँ की ये बात है कि जैसे आपने कहा कि दू खुद
2: एक नियम,
1: एक नियम दन बोले दन कौन तो खुद है
2: जी।
1: काशी विश्वनाथ ऐसा ज्योतिर्लिंग जिनका जानकारी हम सबको प्राप्त हुए, पर हमें ये नहीं पता चल रहा है राजेंद्र जी कि हम लोग द्वादश ज्योतिर्लिंग के बात आज हो रहा है
0: जी।
1: तो अभी हम सब कितने पहुँचे?
0: हाँ, अभी
1: छः हो गया होगा।
0: हाँ, हम अभी एक काशी विश्वनाथ शंभू की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, छः तो हो ही चुका है।

0: ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आगे बढ़ते हैं कि जैसे आप लोगों ने अभी सुना है काशी विश्वनाथ के बारे में पूरा भजन से भी और भगवान शंकर के मंत्र से भी और पूरा नमः शिवाय का ओंकारेश ओम ओम से भी। आगे बढ़ते त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में रहना पड़ा। तो इस प्रकार ज्योतिर्लिंग जो है त्र्यंबकेश्वर की महत्व है। वैद्यनाथ
1: राजेंद्र जी, यहाँ तो कुछ क्योंकि त्र्यंबकेश्वर यहाँ का महत्व तो आप बताए नहीं, इसमें यहाँ कुछ खास चीज पे हम सबको ध्यान देना।
0: त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम् विवंदनात् मृत्युर्मुक्षि यमामृतात्। जो त्र्यंबकेश्वर का महत्व जो वही है कि त्र्यंबकम् यजामहि, जो त्र्यंबकम् त्र्यंबकम् जो लोग त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम् विवंदनात् मृत्युर्मुक्षि यमामृतात्, अमृत्व की प्राप्ति चाहते हैं, मृत्यु को जीतना चाहते हैं, वो भी इस त्र्यंबकेश्वर मंत्र का जाप कर सकते हैं। और जो लोग एकदम इस चीज़ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, विजय पाना चाहते हैं, तो जरूर त्र्यंबकेश्वर का जाप करना चाहिए।
1: बहुत धन्यवाद आपके राजेंद्र जी, जो और ऐसे विशेष बात।
0: महामृत्युंजय मंत्र है त्र्यंबकेश्वर जो है,
1: महामृत्युंजय मंत्र। हाँ, तो इससे कितना और श्रेष्ठता कितना भलाई हम सबके हो सकते हैं। तो आगे कार्यक्रम में
0: आगे बढ़ते हुए वैद्यनाथ की तरफ चलते हैं। वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में नौवां स्थान बताया गया है। भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है। यह स्थान झारखंड प्रांत, झारखंड पहले बिहार में था, अब अलग हो गया है, पूर्व में बिहार प्रांत के संबाल प्रगना में दुमका नामक जनपद में पड़ता है। ये झारखंड में एक पड़ता है और वहाँ पे आप अपना सामान बैग इत्यादि अंदर नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि अंदर बहुत भीड़ हो जाती है। लेकिन वहाँ पे वैद्यनाथ मतलब वहाँ पे जो शिवलिंग है उस पे एक लेप लगाया जाता है हर्बल मेडिसन का।
2: वही तो मैं, ये नाम कहते हैं ना वैद्यनाथ, वैद्यनाथ वैद्य कहते हैं डॉक्टर को,
0: आयुर्वेदिक डॉक्टर को वैद्य कहते हैं। और उस हर्बल का जो लेप होता है उसको एकदम भिगा के और उन पे हर समय रखा जाता है। तो मैं गया हूँ जब वहाँ पे, तो मैंने वो देखा है
2: वैद्यनाथ,
0: वैद्यनाथ में लेप लगा हुआ हर्बल का।
2: अच्छा,
0: हाँ,
2: तो वो लेप वो शिवलिंग पे लगाते हैं या
0: शिवलिंग पे लगाते हैं, एकदम ठंडक रखता है।
2: अच्छा,
0: इसके बाद है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। संजय जी ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का तो दर्शन किया है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर बढ़ते हैं। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान पर स्थित है। धर्मशास्त्र में भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। द्वारका पुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है।
2: श्रद्धा विश्वास के बात है ना।
1: तो राजेंद्र जी क्यों ना एक गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत हम सबको पहले सुना देते तो और अच्छा होता।
0: गीत के बोल है जय जय शिव शंकर, लता मंगेशकर और किशोर कुमार जी ने गाया है, बहुत ही मधुर गीत है। हम आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ।

0: बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, बहुत ही अच्छा बजा रहे लोगों ने, ईमानदारी से भी बजाया और बजाते ही रह गए। आगे बात करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। संजय जी, आप तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गए हो, आपको तो पूरा पता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारका में स्थित है।
1: हाँ, ज्योतिर्लिंग में तो आप एकदम बस सही कह रहे हैं शांता जी की, एकदम गुम हो गए। तो ऐसा हुआ राजेंद्र जी की हम सबको जाना था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का ना
0: जी।
1: तो उतरे वहाँ गुजरात एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट पे उतरे तो गाड़ी लिए और गाड़ी लेकर के हम लोग को जाना था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन। पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन से पहले हम लोग को ले गया वहाँ पर द्वारका,
0: भेंट द्वारका,
1: भेंट द्वारका,
0: भेंट भेंट
1: भेंट द्वारका, उसके बारे में कुछ।
0: भेंट द्वारका का मतलब है,
1: क्योंकि हम गए तो वहां तो बस ऐसा हुआ राजेंद्र जी कि हमने गया बगैर कुछ सोचे समझे वहां पर, बस वो ले गया सीधे मुझे, हम सबको वो जहाज में,
0: पानी वाले जहाज,
1: पानी वाला
0: जी,
1: और उसमें जा करके हम लोग बैठ गए। जबकि जहाज के वहाँ उस पर लिखा था 150 कैपेसिटी, उसमें 400 आदमी।
0: हाँ, तो 150 की कैपेसिटी में 400 आदमी जाएंगे तो उसका तो आनंद ही अलग हो जाएगा।
1: आनंद तो अलग था,
0: पूरा ऐसा ऐसा भी हाँ,
1: और वहाँ जा करके हम सब भेंट द्वारका, भेंट भेंट द्वारका ना,
0: भेंट भेंट द्वारका।
1: उसके बाद में हम लोगों का सीधा वहाँ वहाँ दर्शन हुआ। तो उसके बाद में हम लोगों को किसी कुंड, वहाँ किसी कुंड है जहाँ
0: पानी चढ़ता है,
1: हाँ, तो वहाँ ले गया गया रुक्मणी कुंड मेरे ख्याल,
0: रुक्मणी कुंड,
1: हाँ। तो वहाँ पर हम सब गए, फिर जा कर के द्वारका में हम लोग पहुँचे।
0: हाँ, जो भेंट द्वारका का वहाँ पे एक शंकराचार्य का पीठ भी है, और बाएं साइड में शंकराचार्य का पीठ है और दाएं साइड में भेंट द्वारका, वो द्वारका का मंदिर है, और जब समुद्र के अंदर जाके और आगे भेंट द्वारका है। तो भेंट द्वारका में तंदूल चढ़ते हैं, तंदूल यानी चावल चढ़ते हैं, कच्चा चावल चढ़ता है। वो क्यों चढ़ता है कच्चा चावल, कि जब सुदामा जी और कृष्ण जी दोनों मित्र थे, और सुदामा जी बहुत गरीब हो गए थे
2: जी,
0: क्योंकि उन्होंने चने चबा लिए थे, खा लिए थे पहले ही,
2: और
0: चुपके से, और झूठ बोला था कृष्ण से कि मेरे दांत जो है
2: जी,
0: कटर कटर इसलिए कर रहे हैं कि ठंड ज्यादा है। तो उनको मित्र के साथ गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, तो गुरु से कभी कपट नहीं करना चाहिए, मित्र से चोरी नहीं करना चाहिए, ये तो फिर आपको निर्धन होना पड़ेगा, तो कोड़ी होना पड़ेगा। तो भगवान जो सुदामा जी जो है निर्धन हो गए थे,
1: तो निर्धन माने
0: जिनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं,
1: गरीब
0: गरीब हो गए,
1: पोती सुमा
0: जी। तो जब वो उनकी पत्नी ने कहा कि आपके तो मित्र कृष्ण है, आप कहते हो कि मेरे मित्र कृष्ण है, तो आप उनसे एक बार दर्शन करने जाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कपड़े भी ठीक ढंग के नहीं हैं, और वो कहाँ वहाँ के राजा हैं, और मैं यहाँ सुदामा हूँ, इस प्रकार का कैसे जाऊँ। तो उनकी वाइफ ने बोला कुछ नहीं, थोड़ा सा चावल ही लेके जाइए भेंट के लिए। तो उनकी बीवी ने, उनकी पत्नी ने पड़ोस के घर से थोड़ा सा चावल लिया था, मांग के लाए थी, और एक पोटरी में बांध के भेज दिया था द्वारिका में। तो चले गए थे, तो इसलिए वहाँ पे भगवान कृष्ण ने फिर उन्होंने छुपा के रखा चावल अपनी हाथ के नीचे, कि बताओ ये इतने बड़े वो है, मैं इनको चावल दूंगा तो कैसे लगेगा। तो उन्होंने उनको चावल एकदम छीन लिए वहाँ से, कि आज आपकी वो आदत आज भी नहीं गई, छुपाने वाली भाभी ने चावल दिए हैं, तंदूल दिए हैं, और फिर भी आप उनको छुपा रहे हैं। और एकदम तीन मुट्ठी चावल थे, दो मुट्ठी खा ली
2: जी।
0: और जब दो मुट्ठी खा ली तो जो रुक्मणी जी थी उन्होंने रोका कि अरे आप क्या करने जा रहे हैं
2: जी।
0: दो मुट्ठी खाने का मतलब यहाँ पे ये था कि एक मुट्ठी खाने से एक लोग का राज, दूसरे मुट्ठी खाने से दो लोग का राज दे दिया सुदामा जी को, और तीसरी मुट्ठी पर उन्होंने कहा कि रोक दिया कि आप हम लोग कहाँ रहेंगे
2: जी।
0: तो इतनी बड़ी मान्यता चावल की है भेंट द्वारिका में
2: जी,
0: इसलिए वहाँ पे चावल ही चढ़ते हैं, आज भी चावल चढ़ते हैं
2: जी जी जी।
0: तो ये भेंट द्वारिका का है।
1: तो कहने के तात्पर्य ये है कि दोस्तों, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने को जाए तो जरूर इस स्थान को भी देख करके आना चाहिए।
0: हाँ, जरूर इस स्थान को देख कर आना चाहिए। लेकिन जब आप नागेश्वर जाते हैं उसके आगे ही है, और जब आप जाते हैं इस तरफ तो अलग अलग दोनों कोने पे सोमनाथ एक कोने पे, नागेश्वर बीच में भेंट द्वार के उस कोने पे है, तो इधर से आपको उधर जाना पड़ता है। तो आप जब जाएंगे तो गुजरात के तीनों तीर्थ को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं रामेश्वर ज्योतिर्लिंग में। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग या ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है। भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक भी है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने ही की थी। भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वर दिया गया है। आपको पता होगा कि जब स्थापना भगवान राम ने जब सीता जी को रावण उठा के ले गए थे और उन्होंने वहाँ पे भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए समुद्र के किनारे में, तो उसी समय रावण को बुलाया गया। रावण ही वहाँ पंडित थे
2: जी,
0: क्योंकि
2: जी।
0: उस प्रकार का पंडित कोई था ही नहीं।
2: बिल्कुल।
0: तो भगवान राम ने उस ज्योतिर्लिंग की वहाँ पे स्थापना करी और पूजा करी।
2: हाँ।
0: तो इसलिए उसका बहुत बड़ा विधान है।
2: हाँ हाँ।
0: इसके बाद बढ़ते हैं आगे घृणे, और जब आप वहाँ पे रामेश्वरम में जाए तो वहाँ के बगल में श्रीलंका है। 30 किलोमीटर की दूरी में एक स्थान है धनुषकोटी। धनुषकोटी से 30 किलोमीटर बोट से आप श्रीलंका जा सकते हैं, लेकिन श्रीलंका के लिए आपके पास वीजा होना जरूरी है। चाहे तो भारत का भी हो तो भारत वाले को भी वीजा लगता है।
2: अच्छा।
0: या कोई देश का भी उनको वीजा लेना पहले पड़ता है, नहीं तो वहाँ पे भी मिल जाता है, लेकिन वीजा जरूरी है। इसके बाद बढ़ते हैं घृणेश्वर। घृणेश्वर मंदिर है का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र में संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृणेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इसी मंदिर के समीप स्थित है। यहीं पर श्री एकनाथ जी द्वारा व गुरु व श्री जनार्दन महाराज जी की समाधि भी है। एकनाथ महाराज जो हुए हैं उनकी समाधि भी इसी स्थान पे है।
1: बोले तो एकनाथ,
0: एकनाथ एक बहुत बड़े स्वामी हुए हैं। एक केवल वो एक एक ही चीज को मानते थे एकनाथ, इसलिए उनका नाम पड़ा
1: एकनाथ।
0: हाँ, वो गुरु है और उनकी समाधि भी उसी स्थान पे है। तो इस प्रकार आज जो वृतांत रहा ज्योतिर्लिंगों का, इस प्रकार से रहा। और मुझे अति खुशी होती है इस बात से कि लोगों ने बड़े अच्छे से सुना होगा और इस चीज़ का लाभ भी उठाएंगे भारत में जाके और मनन करेंगे कि ज्योतिर्लिंगों की विशेषता क्या है।
1: तो इसमें भगवान शंकर के और कुछ न कुछ संदेश इसमें छोटा रूप में और रखा गया। तो दोस्तों, जरूर इसके इस कार्यक्रम से अपना जीवन में, जीवन का ज्योति में कोई प्रकार से प्रकाश आपके जो आ सके तो जरूर उन्हें प्रयोग करें। राजेंद्र जी, आगे का संदेश क्या है? क्योंकि
0: आगे का संदेश तो हमारा यही है कि जब जैसे ही हमारा समय यहाँ पे 2 घंटा बीतता है, हमारा लास्ट वाला जो कार्यक्रम रहता है वो लगता है कि उससे पता चल ही जाता है कि लागी छूटे ना अब तो सनम। मोहम्मद रफ़ी जी और लता जी ने बहुत ही अच्छे और उसमें मधुर स्वर में इसको गाया है। काली टोपी लाल रुमाल 1959 यानी कि 1959 में ये सॉन्ग गाया गया था और आज भी वैसे का वैसा है 60 साल होने के बाद भी। तो क्यों ना हम उसकी ओर बढ़ते हुए आप लोगों से विदा लेंगे। बढ़ते हैं उस गीत की ओर।

जिंदगी छोटी नहीं होते हैं, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इस कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश सुने, और आशा यही है कि अगले सप्ताह का कार्यक्रम जरूर सुनते रहना। और हमारे साथ जो शांता जी जो अपना संदेश को दिए हैं, और राजेंद्र जी जो पनेल के पीछे अभी बैठे हुए हैं, तो इन दोनों के साथ हम भी, मैं हूँ संजय, आप सभी को हार्दिक से अभिनंदन, नमस्कार।

निपुण हूँ फिर भी दिल के करीब निशाना है तेरा। हमें जब ये गीत ही केवल सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे जाने का भी अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों के साथ इतना मैं घुल मिल जाता हूँ, लेकिन जाना पड़ता है, दूर ही जाना पड़ता है इसी समय। और अच्छा सा एक कोई कार्यक्रम लेके आप लोगों के लिए, तब तक के लिए मेरा सबके लिए प्यार भरा नमस्कार, शुभ संदेश।